जी दोस्तों, स्टूडियो दी कड़ी थी 12:55 और 45 सेकेंड हो चुके ने और होम स्वीट होम प्रोग्राम जिहड़ा कि चल रहा है उहदा समां जिहड़ा लगभग वो पूरा होने वाला है। तो जिहड़ियां चीज़ां का मैं तुहानूं ध्यान रखने वास्ते कहा वो चीज़ों का जरूर ध्यान रख्या करो, क्योंकि जेकर छोटी छोटी चीज़ा जिहड़ियां असीं अपने ध्यान दे विच लैके आने हाँ तो असीं बहुत सारी बचत कर सकते हैं। पैसे की बचत के नाल नाल असीं अपना समा भी बचा सकते हैं तो साडी एनर्जी जिहड़ी इधर उधर कई बार वेस्ट हो जाती है। कई बार असीं मतलब एवें परेशान हो जाते हैं कि आह चीज़ करनी सी वह चीज़ करनी सी, बहुत सारिया चीज़ें साड़ियाँ वेस्ट हो जाए ने। मौसम इदा का चल रहा है कि वाधू चीज़ा असीं अपने रसोई के लिया के रख लैन तो फिर वो खराब हो जाए ने, उन्होंने कीड़ा या किसी तरह का कोई फंगस लग जाती है तो फिर सानू सिटनिया पैंदियां ने। जेकर तुहाडा बनिया होया भोजन मतलब वाधू बच जाता है तो उन्होंने भी तुसी वरतों के लिया सकते हो। जेकर सुकिया सब्जियां है तो उन्होंने चावलों के मिक्स करके उन्होंने पुलाव बना सकते हो जेकर तुहानू पसंद हैगी। वाधू प्याज टमाटर पिया तो उन्होंने मतलब कि दही दे विच पा सकते हो तो उहदे विच भी एक फ्लेवर आ जाएगा। तो जेकर दालां बच जांदियां तो सबनों पता है कि फिर वो सवेर नूं उठ के साडियां मम्मियां आटा गुन के उन्होंने वक्रे वक्रे तरह के परौंठे बना सकदियां ने। जेकर रात की सिंपल रोटी भी तुहाडे घर बच गई है ना तो उन्होंने सवेर नूं बेसन लगा के एक साइड ते उपर जो भी तुसी नमक या कोई फ्लेवर उपर पाउणा चाहुंदे हो पा के तुसी तवे ते बहुत सौखे तरीके दे नाल उहनूं बना सकदे हो। सॉस दे नाल या फिर चाय या फिर दही दे नाल तुसी उहनूं सर्व करोगे तो यह भी तुसी इंजॉय कर सकदे हो। सो प्रोग्राम होम स्वीट होम दे विच होर बहुत सारी जानकारी सी मेरे को, लेकिन समा जिहड़ा है वह हो चुका है। तो आखिर दे विच गीत सुणदे हां मिस पूजा की आवाज़ दे विच, किन्ने सोहणे दिन ने।

गांव वालों बसंती को समझाओ, आजकल वो मेरी नहीं सुनती, सारा दिन एफएम रेनबो सुनती रहती है। ऑल डे लिसनिंग एंड लिसनिंग एंड

0: कावल अब मैं जा रहा हूँ।
1: कहाँ जा रहे हो?
0: एफएम रेन बोला ने कसम, सुनते रहिए 102.7 एफएम रेनबो।
2: एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ दी नाल नाल 103.6 मेगाहर्ट्ज़ यानी कि आकाशवाणी अमृतसर देवी। सारे स्रोतियां दा निघा जिहा स्वागत है जी, सब नू वार्म वेलकम जी, आया नू ते प्यार भरी सत श्री अकाल मेरे वालों यानी रणदीप वालों। ते जी अज दा ये सफ़र बहुत वधिया रिहा है ते रहेगा। 2 बजे तक रहांगी मैं तुहाडे नाल, ते प्रोग्राम दी शुरुआत करते हैं जिहदा नाम है मिड डे मेलोडीज़। और जिवें कि मैं हर बार तुहानू कहनी हाँ कि पूरे शोर शराबे तो बाद एक सुकून वाला पल जिहड़ा आउंदा ना, वो पूरे एक घंटे का हुंदा है, जिहदे विच वो पुराने सफ़र पुराने दौर दे विच पुरानियां गीतां दे नाल नाल असीं बहुत सारियां यादां नू तरोताज़ा करदे हाँ। तो बिल्कुल जी उसी तरह ये प्रोग्राम है मिड डे मेलोडीज़, प्यार भरे रंग अफसाने और तराने सिर्फ और सिर्फ 102.7 एफएम रेनबो पर। और पहला गीत जो आपकी रेडियो सेट्स पर आएगा वो है लता मंगेशकर की आवाज़ में, लग जा गले से।

0: तौबा तौबा ये जवानी।
1: क्यों जी, मैं कहा सी ना कि अज दा ये प्रोग्राम तुहानू बेहद पसंद आया होवेगा। कई बार ना कुछ इंसानां नू असी उन्हां दे जीउंदिआं जी शायद उन्हां लई ओह कुछ नहीं कर पाउंदे, लेकिन उन्हां दी दुनिया तों रुखसत होण तों बाद फिर सानू उन्हां दी याद और कीते होए कम्मां दी प्रशंसा करन ना वधिया लगता है। पता नहीं इदां की हुंदा है, और इदां ही कुछ होया है बेस्ट म्यूजिक डायरैक्टर यानी कि मदन मोहन दे नाल। कुछ जिंदगी दे विच उन्हां नू रुझेवें सन, पर उहदे नाल नाल उन्हां नू जो जिंदगी दे विचों प्यार मिलिया है, जो उन्हां दी ऑडियंस ने, उन्हां दे लिसनर्स ने उन्हां दित्ता है, वाकई जी वह बाकमाल सीगा। 1971 विच फिल्म दस्तक लई उन्हां नू ना राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिलिया, यानी कि बेस्ट म्यूजिक डायरैक्टर दा अवार्ड जिहड़ा उन्हां नू मिलिया। लेकिन समां जिदा जिदा कहिंदे ने कि भजदा जांदा है, तो किसी नू पता नहीं हुंदा कि आउण वाले समें दे विच उहदे नाल की हो सकदा है, क्योंकि समा जिन्ना परमात्मा ने लिखिया है उन्ना ही असी बिता सकते हैं। तो इदा दे कुछ भाणा वापर गया सीगा मदन मोहन जी हुणा दी जिंदगी दे विच। एक बहुत ही भयानक बीमारी दे नाल वो जूझण लग गए, तो उस तो बाद वो साडा साथ जिहड़ा छड के उस इस जहान तो उस जहान दे विच चले गए। परमात्मा उन्होंने जिथे भी रखे अपने चरणों के नाल ला के रखे, और उन्होंने ये जिहड़े गीत ने वो सदाबहार ने, सदाबहार सी, सदाबहार है, तो सदाबहार रहणगे, और खास करके प्रोग्राम मिड डे मेलोडीज़ की ये रौनक बने ने।
0: तौबा तौबा ये जवानी, ये जवानी का गुरूर, इश्क के सामने सर फिर भी झुकाना ही पड़ा।

नमस्कार, एफ एम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्स ते आकाशवाणी जलंधर दा ए रेनबो चैनल है। ते तुसी अपने मेज़बान आर जे जोरावर सिंह नू सुन पा रहे हो। लैके हाजिर हाँ जी तुहाडा अपना मन पसंद प्रोग्राम जिहदा नाम है दिल आज शायर है। सो दोस्तो, मैं हाँ तुहाडा अपना दोस्त आर जे जोरावर सिंह। कहिंदे ने सच्ची मुहब्बत कदे शोर नहीं मचाउंदी, वो तां खामोश रह के भी दिलां विच उमरां तक वसदी है। अज दी इस सुहाणी महफल दा विशा है सच्ची मुहब्बत। शुरुआत एक शेर दे नाल करदे आ। कहिंदे ने कि मुहब्बत नाम नहीं सिर्फ किसी नूं पा लैण दा, मुहब्बत नाम नहीं सिर्फ किसी नूं पा लैण दा, मुहब्बत तां नाम है किसी दी खुशी विच अपनी खुशी लभ लैण दा। हाय, एक और अर्ज है। इश्क ओ नहीं जो हर रोज़ इजहार मंगे, इश्क ओ नहीं जो हर रोज़ इजहार मंगे, इश्क ओ है जो हर हाल विच एतबार मंगे। जिस रिश्ते विच वफा दी खुशबू होवे ओही सच्ची मुहब्बत दी रूह हुंदी है। सो आओ जी, अज दी इस शायराना शाम नू शब्दां दी महक, गजलां दी नरमी ते दिल दीयां धड़कनां नाल सजाइए। सुणांगे ओ गीत, ओ गजलां अते ओ शेर जो सच्ची मुहब्बत दा एहसास होर भी गहरा कर देण। सो सरोतियो, मेरे प्यारे दोस्तो, मैं तुहानूं गुजारिश करदा कि तुसीं अपने अपने जिहड़े आ मोबाइल फोनस जिहड़े आ मैनूं लगदा तुसीं कढ ही ले होणे आ, ते नंबर तुहानूं पता ही है, ते तुसीं फटाफट फिर सानूं मैसेजेस वगैरह भेजने शुरू करो। जिहड़े तुसीं सानूं शेयर भेजोगे एक बारी री रीड जरूर कर लियो, तां कि कोई तुहाडे दिल दे जज्बात अधूरे ना रह जाण। ते असीं तुहाडे दिल दे जज्बातां दा इंतज़ार कर रहे हां, ते फटाफट तुसीं सानूं व्हाट्सएप दे ते मैसेजेस भेजने शुरू करो, तां कि असीं इस शो नूं होर खूबसूरत बना सकी। जिहड़े साडे नाल नवें सिरे तों जुड़ चुके ने ओह एक वारी नंबर नोट कर लैण, 9855010279855101027। ते आओ फिर देर किस गल दी आ, फटाफट अपने सोहणे सोहणे सुनेहे भेजो।

ये गजल जनाब वसीम बरेलवी साहब की है और अभी जो मैंने शेर पढ़ा वो असल में थोड़ा सा अलग है, लेकिन मैंने अपनी सहूलियत के लिए थोड़ी सी गुस्ताखी की है, जिसकी मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे भी और जनाब वसीम बरेलवी साहब से भी। वो शेर असल में कुछ ऐसे है, किताब माजी के और आँख उलट के देख ज़रा, किताब माजी के और आँख उलट के देख ज़रा, न जाने कौन सा सफ़ा मुड़ा हुआ निकले। लीजिए अगला शेर पेश कर रहा हूँ।

समंदर क्या किसी की प्यास बुझाएगा, ये खारा पानी दिल को और जलाएगा। जिसे समझे थे हम सुकून का किनारा, वही लहर बनकर हमें डुबाएगा। मोहब्बत में वफा की उम्मीद कैसी, यहाँ हर शख्स एक दिन आजमाएगा। जो मोहब्बत में जला है वही समझेगा इसे, ये किस्सा हर किसी को कहाँ समझ आएगा। वाह वाह वाह, क्या बात, क्या बात है। सो ये सानू जिहड़ा सुनेहा भेजा है, ये भेजा जी राम स्वरूप अरोड़ा जी चौंक चेलियाँ सुल्तानपुर लोधी तो। नमस्कार सर, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, हार्ट टचिंग फीलिंग, एक्सीलेंट वे टू एक्सप्रेस दिल से दिल तक असर कर गया, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जी राम स्वरूप अरोड़ा चौंक चेलियाँ सुल्तानपुर, थैंक यू जी, थैंक यू। अगला सानू भेजा जी स्नेहा, बड़ी खूबसूरत इन्होंने फोटो भेजी है। कुछ लोग मिलते हैं तो दिल को सुकून मिलता है, वाह वाह सही गल है। कुछ लोग बिछड़ते हैं तो जिंदगी बदल जाती है, बिल्कुल सही गल है। ना जाने क्या रिश्ता था तुमसे मेरा, तुम मिले भी नहीं और यादें रह गई। वाह जी वाह, ये कोई पिछले जन्म का रिश्ता लगता हुंदा है जी, इदा हुंदा, बड़े जने नाल हुंदा, साढ़े नाल भी हुंदा, सारे नाल हुंदा है। ये प्यार ही है जी, सारे पासे प्यार ही है जे महसूस किया जाए। अज ही मैं आ रहा सीगा अपने वहीकल से, एक लड़का जा रहा सीगा ते उहदे बैग बहुत भारा सी, मैं रोकी गड्डी, मैं कहा जी छड्ड आईए तुहानू, वो आई थिंक कोई प्रवासी सीगे ते बैठ गए। तो जाते जाते मैंने उन्होंने कहता, सरदार जी आप बहुत अच्छे इंसान हो। तो मैं 2 सैकेंड का पॉज लिया, तो मैं इन्हू आख्या भी देख भाई आप सारे ही अच्छे हैं, असल च आप देखते किस नज़रिए दे नाल आ ये साढ़े ते डिपेंड करता। वो सारे रस्ते बेचारा सुन नहीं हो गया, मैं सोची जावा मैं कोई गलत गल तो नहीं कहती। फिर जो ओदा पॉइंट आया जिथे उन्हें उतरना सी तो भावुक होया पिया, तो सारी प्यार की गल है, सारी प्यार की गल है। सो फटाफट असं मैसेज पढ़ते हैं ता कि तुम साढ़े तो नाराज ना हो। तो अगला मैसेज सानू भेजा है जी, ओके ये लिखते ने गुरु नानकपुरा बठिंडा तो। सत श्री अकाल जी, बहुत वड्डी फोटो इन्होंने भेजी है, बड़ी खूबसूरत है। प्रोग्राम बहुत ही वधिया चल रहा जी, रेडियो सुन के असी भी मैसेज भेज दिता जी, थैंक यू जी तुसी सानू मैसेज भेजा, सत श्री अकाल जी। गुरु नानकपुरा बठिंडा पंजाब से किशोर सबलानिया सावित्री जी सुमन जी बेटी अंशु जी, बहुत शुक्रिया। तुसी सानू शेर जरूर भेजना सी, शेर भेजा करो। लो जी अगला शेर आया सानू, वाह वाह बड़ा जाया, ओके तो इन्होंने भेजा सानू आपको प्यार भरा आदाब, आदाबी आदाब जी आदाब। प्लीज़ प्ले, अरे ये सोंग वाला नहीं हैगा जी, ये तुसी अपने अपन जिन्नियाँ शेरो शायरियाँ ने ना, ये तुसी आज दा टॉपिक तुहानू याद ही होएगा, अज दा सच्ची मुहब्बत, सच्ची मुहब्बत के उत्ते तुसी सानू जरूर ये वाले सुनेहे भेजो। और एक बार फिर तो मैं गुजारिश करांगा कि तुसी री रीड जरूर कर लिया करो। सो अक्सर मैं एक जड़ा शेर मेरा मनपसंद मैं बोलता हूँ तो वो मैं जरूर बोलना चाहवागा कि रिश्तों के उत्ते भी एक सच्ची मुहब्बत ही होंगी है, कि जिंदगी में रिश्ते बनाना इतना आसान है जैसे मिट्टी पर मिट्टी से मिट्टी लिखना, निभाना उतना ही मुश्किल है जैसे पानी पर पानी से पानी लिखना। बड़े गहरे ये अर्थ ने। अगला सानू मैसेज भेज देने, रूहां का ये रिश्ता साडा जिस्मा का मोहताज नहीं, दिल दे तखत ते तू ही बैठे होर किसी का राज नहीं, दुनिया दियां नज़रां विच भावें साडा साथ अधूरा है पर सच्चे इश्क दे अंबर उत्ते अपना चन्न तां पूरा है। वाह जी वाह, पाली प्याला होशियारपुर तो। अगो जी सानू मैसेज बहुत सारे आ रहे हैं, तो उस तो पहला मैनू लगता एक सानू गज़ल सुन लेनी चाहिए। एक मैसेज पढ़ के, बीते वक्त दियां यादां संभाल के रखी असी याद तो आवांगे पर वापस नहीं, हाए होए इदा ना करो, वापस जरूर आओ, किसी ना किसी रूप से जरूर आओ, मिलो, क्योंकि मिलन दे नाल ही सारिया खुशियां जिहड़ियां असी सांझी कर सकते हैं, भावें दूर भी बैठे हो, दूर बैठे बैठे मिल लो। सो दोस्तों स्टे ट्यून्ड, बड़े खूबसूरत तुसी मैसेज भेज रहे हो। सो अगली गज़ल तो बाद असी बाकी सारे मैसेज पढ़ेंगे, नाराज असी किसी नहीं करना, ठीक है जी।

0: लिए हमें दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक मेसोपोटामिया की सभ्यता में चलना होगा। ये तो बता दें श्रोताओं को कि मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ थी।
1: जी, मेसोपोटामिया की सभ्यता आज के इराक में विकसित हुई थी। श्रोताओं को ये जानकर आश्चर्य होगा कि तब पुस्तकें मेसोपोटामिया में मिट्टी की थी।
0: मिट्टी की, और वो भी पुस्तकें, ये तो बड़ी विचित्र बात है।
1: जी, बात तो विचित्र है ही। श्रोताओं, आपको बता दें कि दुनिया की पहली पुस्तकें वास्तव में आज की तरह की पुस्तकें नहीं थी, बल्कि वे मिट्टी की तख्तियां थीं।
0: जी,
1: तो विमलेश जी, अब आपकी बारी है ये बताने की मेसोपोटामिया की सभ्यता के निवासियों को क्या कहते थे और वे मिट्टी की पट्टियों पर लिखते कैसे थे।
0: जी, मेसोपोटामिया के निवासियों को सुमेरी या सुमेरियन कहते थे। ये लोग मिट्टी को गीला करके उसे आज की स्लेट की तरह एक आकार देते थे और फिर उस पर धातु की कील या हम कह सकते हैं नुकीली कलम से लिखते थे।
1: जी,
0: इसलिए मिट्टी की पट्टियों पर लिखे

0: वर्णों को पुरातत्वविदों ने कीलाक्षर भी कहा है।
1: जी जी, कीलाक्षर यानी कील से लिखे हुए अक्षर।
0: जी,
1: ये तो सचमुच बड़ा रोचक होता जा रहा है। लेकिन विमलेश जी, एक प्रश्न मेरे मन में है, और वो ये है कि क्या ये मिट्टी की पट्टियाँ टिकाऊ होती थी?
0: बिल्कुल होती थी। पहले उन लिखी गई उन पट्टियों को वो धूप में सुखाते थे, फिर उन्हें भट्टी में पकाया जाता था। ऐसी मिट्टी की पट्टियाँ हजारों वर्षों तक सुरक्षित रह जाती थीं।
1: श्रोताओं, जरा कल्पना कीजिए कि यदि आपको 300 पृष्ठों की एक पुस्तक पढ़नी हो
0: जी,
1: और हर एक पृष्ठ एक भारी मिट्टी की पटिया हो, तो
0: ऐसी कल्पना करना ही हमें अपने आप में आज से 5000 वर्ष के पूर्व के काल में ले चलता है। अजीत जी, ये जानना भी बहुत रोचक रहेगा कि सुमेरी लोग इन मिट्टी की पटियाओं या क्ले टैबलेट्स पर लिखते क्या थे, जरा श्रोताओं को भी तो बता दें।
1: जी विमलेश जी, ये जानना तो सच में बहुत ही रोचक होगा, क्योंकि इससे हमें उनकी सभ्यता और इतिहास की बहुमूल्य जानकारी मिलेगी। मजेदार बात यह है कि उनके द्वारा लिखी गई हजारों मिट्टी की तख्तियाँ आज भी पढ़ी जा सकती हैं।
0: जी,
1: इनमें वे लिखते थे व्यापार का हिसाब किताब, राजकीय अभिलेख, सुमेरी कानून और संहिताएं,
0: युद्धों और विजयों का विवरण और राजाओं की उपलब्धियाँ, कहानियाँ और कविताएं। उन्होंने महाकाव्य भी लिखे जिनमें एपिक ऑफ गिलगामेश बहुत प्रसिद्ध है।
1: श्रोता, आपको बता दें कि कीलाक्षरों को क्यूनिफॉर्म भी कहा जाता है, और 19वीं शताब्दी में ही विद्वानों ने कीलाक्षरों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। श्रोता, आपको बता दें कि दुनिया भर के संग्रहालयों में ये कीलाक्षर प्रतियां सुरक्षित हैं, और वे आज भी हमें आज से 5000 वर्ष पूर्व पुरानी सभ्यता के लोगों के सामाजिक, शैक्षिक और दैनिक जीवन की जानकारी देती हैं।
0: जी, तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी, और अब सुनिए आज का प्रश्न, जिसका उत्तर छिपा हुआ है आज की ही जानकारी में। प्रश्न है,
1: आज का प्रश्न है, कीलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: कीलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है?
1: तो हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर, और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप हमारे प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम।
1: तो आज के कार्यक्रमों की कड़ी में हमारा पहला कार्यक्रम है अरावली की कहानी।
0: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में अरावली पर्वतमाला के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है, और बताया गया है कि उत्तर भारत के उपजाऊ मैदानों को रेगिस्तान बनने से रोकने में इसकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है।
2: नमस्कार दोस्तों, रेडियो श्रृंखला पर्वत भी बोलते हैं मैं आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं सचिन, और मेरे साथ हैं कुछ नन्हे मुन्ने साथी, यानी रिद्धि, रिदित, सोहम, नव्या और मनन, जो आज बहुत ही खुश हैं, क्योंकि उन्हें जानी मानी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुचिता ने आज अपने रेडियो शो में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में, जहां शुरू होने वाला है हमारा रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर सुचिता के साथ साथ आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
4: धन्यवाद सर।
2: तो करते हैं शुरुआत। डॉक्टर सुचिता, हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की, तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर हैं क्या, यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें?
5: वाह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। उन्हें खड़ी ढलान यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
3: यस मैम।
5: आह, क्या बात है
6: मैम।
5: हाँ बेटी,
6: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
5: बिल्कुल कहा।
6: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं, क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
5: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहाँ कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियाँ होती है, उन्हें पता है क्या बोलते हैं? पहाड़ी कहते हैं।
6: जी, पहाड़ी।
2: अरे वाह। अच्छा, लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि

0: आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं?
1: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों, जानना है ना इसके बारे में?
2: यस मैम।
1: देखो, ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
2: अच्छा।
1: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
2: अच्छा।
1: तो बच्चों, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें, तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती हैं।
2: अच्छा, मैंने भी देखा है।
0: आरा और वली यानी अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
3: मैम, अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
1: बिल्कुल, जरूर बताएंगे। अब जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
4: लंबाई 800 किलोमीटर, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है?
1: सोहम, ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुँचती है और बीच में आने वाले राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। बताओ कौन कौन से?
2: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली।
0: बहुत अच्छे, तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात।
1: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
3: जी मैम,
5: जी मैम, हमेशा याद रखेंगे।
0: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है? क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
1: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गयी।
4: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
1: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन।
2: सॉइल इरोजन,
1: बिल्कुल ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। शेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं, जो राजस्थान में ही है।
0: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है?
1: सचिन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों जानना चाहोगे ना?
2: हाँ, जी मैम।
5: यस मैम।
1: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
5: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
1: हाँ रिद्धि, बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
4: मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं, क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती है?
1: सोहम, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं: बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत से वन्य जीवों की शरण स्थली है। मैं बताती हूँ, जैसे तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, नीलगाय, सांभर, चीतल और जंगली सुअर इत्यादि।
0: अरे वाह सुचिता जी, देखिए अब ये तो आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में, लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो?
1: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, जिनमें मुख्य हैं तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
0: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
1: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
0: ओह।
1: अब जैसे अच्छा। जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली

0: बेटी को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
1: जी मैम।
2: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
1: बहुत अच्छी लगी।
2: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का ये अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
1: धन्यवाद सर।
3: धन्यवाद मैम।
4: साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अरावली शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है, अरा और अवली। अरा का अर्थ है पर्वत की चोटी और अवली का अर्थ है कतार या श्रृंखला। इन दो शब्दों से मिलकर बना शब्द अरावली। तो साथियों, कुल मिलाकर अरावली शब्द का अर्थ है चोटियों की कतार या पर्वत शिखरों की श्रृंखला। ये नाम अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक बनावट को दर्शाता है, जो लंबी चोटियों वाली पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
2: अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा पता लगाइए कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर में मिलती हैं, और फिर उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।
4: अरावली की कहानी। अभी आप सुन रहे थे NCERT की कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार विनीता ठाकुर और मुनीश शर्मा, बाल कलाकार रिद्धि, नव्या, रिदित, सोहम और मनन, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है जंगल के साथी।
5: इस कार्यक्रम में पशु पक्षियों की भूमिका के द्वारा ये संदेश दिया गया है कि एकता में ही बल है, बिना किसी आपसी मेलजोल के हम किसी कार्य को पूरा नहीं कर सकते। कार्यक्रम में बताया गया है कि किस प्रकार जंगल के पशु पक्षियों ने मिलजुल कर असंभव से लगने वाले कार्य को पूरा किया।
4: जंगल के साथी।
6: दादी माँ, आज मुझे परियों की कहानी नहीं सुननी। आप रोज रोज परियों की कहानी सुना देते हो, आज तो मुझे जंगल की कहानी सुननी है। मेरा जंगल देखने को बड़ा मन करता है। दादी माँ का सुनाओ भी कहानी। चुप क्यों हो, सुनाओ ना।
7: अरे सुनाती हूँ दीपू, अभी सुनाती हूँ, जरा मिश्री तो खा लूं। अब जरा गला तर हो गया है। लो सुनो,

0: दादी माँ सुनाओ भी कहानी जल्दी से।
1: हाँ सुनाती हूँ दीपू। एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन। एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन। क्यों जी दीपू, कौन रहता था जंगल में?
0: दादी माँ एक हिरन।
1: शाबाश।

0: रंगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन।
1: दादी माँ, क्या हिरन अकेला था या उसका कोई साथी था? बताओ ना दादी माँ, बताओ ना, बोलो ना दादी माँ।
0: अरे उसका कोई साथी नहीं भाई, उसका कोई साथी नहीं। उछलता रहता कभी कहीं भाई, उछलता रहता कभी कहीं भाई कभी कहीं।
2: मेरा कोई साथी नहीं। अब मैं क्या करूं भाई।
0: चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव। एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव। एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव। और दीपू तब देखा उसने एक नन्ना मुन्ना खरगोश। क्या देखा दीपू?
1: एक नन्ना मुन्ना खरगोश।
0: शाबाश, एक खरगोश भाई एक खरगोश, एक खरगोश भाई एक खरगोश। इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता, इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। हरी हरी वो घास था खाता, हरी हरी वो घास था खाता। क्यों भाई दीपू जी, क्या खाता था वो खरगोश?
1: हरी हरी वो घास था खाता।
0: शाबाश, फिर क्या हुआ? धीरे धीरे धीरे धीरे खरगोश आगे बढ़ा तो क्या देखता है?
1: अरे ये क्या, ये तो हिरन भाई लेटे हैं। क्यों भाई क्यों, हिरन जी क्यों लेटे यूं उदास हो क्यों? क्या कुछ खोया है तुम्हारा, क्या मम्मी ने है तुमको मारा?
2: ना कुछ खोया है हमारा, ना मम्मी ने हमको मारा, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती।
1: क्या तुम मेरे साथी बनोगे, मेरे साथ खेलोगे?
3: हाँ हाँ, क्यों नहीं, बड़ा मजा आएगा, हम दोनों मिलकर खेलेंगे घूमेंगे और साथ साथ रहेंगे।

0: दादी माँ दादी माँ, जंगल में तो खरगोश और हिरन बड़े मजे करते होंगे ना, क्या मैं उनके साथ दोस्ती कर सकता हूँ?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
2: राम जी, अब तुम सो जाओ दीपू, बहुत नींद आ रही है मुझे। आगे की कहानी कल सुनाऊंगी।
0: नहीं दादी माँ, मुझे अभी नींद नहीं आ रहा है, आगे सुनाओ ना क्या हुआ।
2: ओफो, बड़े जिद्दी हो तुम। अच्छा सुनो, जंगल में जब हिरन और खरगोश उछलते कूदते घूम रहे थे ना, तब उन्होंने आकाश में बादल देखे।
0: बादल देखे, फिर दादी माँ?
2: फिर चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। क्या दिखा दीपू?
0: रंग बिरंगा सुंदर मोर दादी माँ।
2: शाबाश। छाई थी घटा घन घोर, नाच रहा था सुंदर मोर। नाच रहा था सुंदर मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, पंख फैला कर।

0: मोर ताता थैया नाचे मोर रंग बिरंगा सुंदर मोर ताता थैया नाचे मोर भई नाचे मोर रंग बिरंगा सुंदर मोर। और भाई दीपू, फिर मोर को देखकर खरगोश बोला,
1: क्यों भाई क्यों मोर जी, हमसे दोस्ती करोगे?
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो साथी ही ढूंढ रहा था।
1: दादी माँ, अब तो तीनों दोस्त बन गए। फिर?
0: अरे फिर क्या दीपू, अब तो तीनों यानी
1: खरगोश, हिरन और मोर।
0: शाबाश, तो अब ये तीनों जंगल में साथ साथ घूमते, साथ साथ नाचते और साथ साथ गाते, मिलजुल कर रहते।
1: फिर तो दादी माँ तीनों ही गाते होंगे।
0: क्या गाते होंगे रे, क्या गाते होंगे?
1: बन गए हैं साथी, मिलकर रहेंगे हम तुम, मिलकर रहेंगे हम तुम, खुशियाँ बांटेंगे हम तुम, खुशियाँ बांटेंगे हम तुम।
0: अरे तुझे तो बड़ा गाना याद है, अब सो जा, गाते गाते रात हो जाएगी, सो जा।
3: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम जंगल के साथी, और अब इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुम लता,
4: जगबंधु,
3: चेतना
4: और मंजू कुमारी जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार।
5: उमंग उमंग उमंग उमंग,
6: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: अब होगा शिक्षा, मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: उम्र बदलती है, शरीर बदलता है, लेकिन क्या इन बदलावों के साथ जिंदगी की रफ्तार भी बदल जानी चाहिए? नमस्कार, आपके अपने कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपकी अपनी दोस्त और मेज़बान शिल्पा गुप्ता। कहते हैं बदलाव जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन जब यही बदलाव हमारे शरीर और मन में एक साथ होने लगें तो कई सवाल भी साथ लेकर आते हैं। महिलाओं के जीवन में ऐसा ही एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, मीनोपॉज यानी मासिक चक्र का स्थायी रूप से बंद होना, अचानक गर्मी लगना, नींद ना आना, मूड में बदलाव, चिड़चिड़ापन या फिर हड्डियों से जुड़ी परेशानियाँ, ये संकेत हो सकते हैं मीनोपॉज के। तो इन बदलावों को परेशानी नहीं, समझदारी से संभालने का समय है। यही विषय है हमारे आज के रेडियो डॉक्टर का, मीनोपॉजल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस, जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं दो महिला रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रोफेसर रेणुका मलिक जो कि प्रिंसिपल कंसल्टेंट हैं गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर RML हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
2: शुक्रिया शिल्पा।
1: और हमारे साथ हैं डॉक्टर सीमा प्रकाश जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं गायनोकोलॉजिस्ट GTB हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू सो मच शिल्पा।
1: दोस्तों, हमारा एक कार्यक्रम फ़ोन इन प्रोग्राम है जहां आप सीधा जुड़ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से। हमारा फ़ोन नंबर है 2342-1080। अगर आप दिल्ली से बाहर से फ़ोन कर रहे हैं तो 011 लगाना ना भूलें। आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। आप हमारे इस प्रोग्राम को प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन AIR पे भी लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से सुन सकते हैं। तो श्रोताओं, जुड़े रहिए हमारे साथ रेडियो डॉक्टर में। आज हम बात करेंगे मीनोपॉजल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस पर। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि अक्सर महिलाएं कहती हैं हमारी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, क्या हो रहा है हमारे साथ, हमें समझ में नहीं आ रहा। तो हमें सबसे पहले ये बताइए कि ये मीनोपॉज है क्या और क्यों होता है ये और किस एज में होता है?
2: शिल्पा, बहुत बढ़िया शुरुआत का क्वेश्चन है आपका। मीनोपॉज, जिसको हिंदी में रजोनवृत्ति कहते हैं, एक वुमेन की लाइफ में, औरत की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट पड़ा हुआ। ये अराउंड 46 और 47 ईयर्स के बीच में इंडिया में औरतों को होता है। महीने का माहवारी का स्थायी रूप से बंद होना एक साल के लिए को रजोनवृत्ति कहा जाता है। और एक औरत का बेसिकली सारे शरीर पे एक ओवरीज जो होती हैं काम करना वो बंद कर देती हैं। ओवरीज वो दो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स बनाती हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, और बॉडी में

0: एफिशिएंसी की वजह से काफ़ी चेंजेस आते हैं। तो एक औरत को मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए इस पड़ाव के लिए, और उसमें कुछ अपनी प्रिकॉशंस रखनी चाहिए ताकि ये पार्ट स्मूथली चलता रहे।
1: तो डॉक्टर सीमा आपसे जानना चाहेंगे कि जो बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं जो हमें इसमें देखने को मिलते हैं, जिसे हमें पता नहीं लगता लेकिन बॉडी में चेंजेस हो रहे होते हैं।
2: हाँ एग्जैक्टली एक्चुअली क्या है कि ये जो है एक ट्रांजिशन फेज तरह से होता है, जैसे कि सडनली नहीं होगा, आपको धीरे धीरे चेंजेस महसूस होने शुरू होंगे, खास करके जो मीनोपॉज का जो टाइम है जिसे हम पेरीमीनोपॉज कहते हैं या प्री मीनोपॉजल सिम्टम्स जिन्हें कहते हैं, उसमें धीरे धीरे महिलाएँ महसूस करना शुरू करती हैं, जैसे कि जिनको हम कहते हैं कि वेजोमोटर सिम्टम्स, एकदम से सडनली गर्मी लगना, हॉट फ्लैशेस जिसे कहते हैं, या चिड़चिड़ाहट हो जाना, मूड चेंजेस हो जाना, स्किन में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं जैसे कि ड्राइनेस हो जाती है, इसके अलावा जो है बोन्स की कमजोरी आनी शुरू हो जाती है, हल्की पड़ने लग जाती हैं बोन्स, जिसे कि हम ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपीनिया से शुरू होता है और ऑस्टियोपोरोसिस में जाके वो कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा जो दूसरे सिम्टम्स हैं जिन्हें कि हम जेनिटो यूरिनरी या जनांग से संबंधित जो सिम्टम्स होते हैं, उसमें ड्राइनेस हो सकती है महिला को, हस्बैंड से संबंध बनाते समय पेन हो सकता है, और इचिंग हो सकती है यूरिन करते समय, पेन हो सकता है, या कई बार मल्टीपल टाइम्स उनको ये ऐसी फीलिंग आती है जैसे कि उनको यूरिनरी इन्फेक्शन हो गया हो, जबकि एक्चुअली ये रिलेटेड टू मीनोपॉज होती हैं चीज़ें। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को एक बार अपनी जो 45 से 55 साल के बीच की जो उम्र है जिसमें कि उनको मीनोपॉज किसी भी एज पर हो सकता है, तो उस समय पर उन्हें ये ध्यान देना है कि अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं तो फ़ौरन इस बारे में सोचें और अपने डॉक्टर से सलाह लें।
1: रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं मीनोपॉज समस्याएं और समाधान पर, इस पे बातें हम और भी करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं मीनोपॉजल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस पे। तो डॉक्टर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये प्रॉब्लम्स किस एज में स्टार्ट हो जाती हैं।
1: ये जो मीनोपॉज से पहले एक फेज़ आता है जिसको ट्रांजिशन फेज बोलते हैं, ये 40 साल की उम्र में आता है। मीनोपॉज से तकरीबन बिटवीन 5 to 10 ईयर्स पहले आता है। तो इसमें कैसे पता चलता है? आपकी जो माहवारी जो रेगुलर आ रही होती है, अब तक इरेगुलर होनी शुरू हो जाती है। 7 दिन पहले आ जाएगी या लेट आएगी, और आखिर में जब पीरियड बंद होने का टाइम और पास में आएगा तो महीना रुकना शुरू हो जाता है। 2 महीने माहवारी नहीं आई, और फिर आई तो कभी कभी ज़्यादा भी आ सकती है। ऐसे ऐसे करके एक फेज़ आता है कि महीना माहवारी आई, उस फाइनल मेंस्ट्रुअल पीरियड जिसको कहते हैं, उसके बाद पीरियड आया ही नहीं, फिर 1 साल तक रुकने को उसको हम मीनोपॉज बोलते हैं, रजोवृत्ति या मीनोपॉज बोलते हैं।
0: तो मीनोपॉज से पहले का दौर यानी पेरी मीनोपॉज की दस्तक को एक महिला कैसे पहचाने? शरीर में सबसे पहले कौन कौन से सिम्टम्स दिखेंगे या शरीर कौन कौन से संकेत देता है?
2: देखिए, उसमें ऐसा हो सकता है कि कई बार महिलाओं को इरेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं, या फिर उनको जो माइल्ड सिम्टम्स हैं कि कहीं जोड़ों में दर्द या गर्मी लगना, अचानक से कुछ सेकंड्स के लिए बहुत तेज़ गर्मी लग सकती है, या उनके अंदर कुछ मूड चेंजेस आ सकते हैं जैसे कि चिड़चिड़ाहट हो सकती है, या मतलब उन्हें मन नहीं करेगा किसी काम को करने के लिए, या घर में भी जैसे एंग्जाइटी के इश्यूज भी हो सकते हैं। इस तरीके के माइल्ड सिम्टम्स जो होते हैं उनको एक पहचान की तरह से उन्हें दिखाई देना शुरू होते हैं। एग्जैक्ट जो मतलब सीवियर सिम्टम्स जो हैं वो मीनोपॉज के बाद ही ज़्यादा दिखाई देते हैं।
0: तो ये जो आपने कही कि जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं, ये जो मूड स्विंग्स भी होते हैं, तो इनको सबको कैसे मैनेज करें?
1: देखो, इसमें ये होता है कि हर किसी को परेशान नहीं करते, और 100% सबको नहीं हो रहे होते, तकरीबन 10 to 20% को होते हैं। उनमें से अराउंड 5% को ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको लग रहा है आपको इतने ज़्यादा हॉट फ्लशेज आ रहे हैं कि आप काम नहीं कर पा रहे, आप डिस्टर्ब हो रहे हो, आप रात को सो नहीं पा रहे, कि आपकी लाइफस्टाइल ख़राब हो रही है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब हो रही है, तो उन कंडीशंस में हम आपको ट्रीटमेंट देते हैं।
0: एक मैसेज है हमारे पास, ये लिखती हैं नमस्कार मैम, मैं दिल्ली नरेला से बात कर रही हूँ। मेरा यूट्रियस 2016 में और राइट ओवरी 2014 में निकाल दी गई थी। मुझे एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम थी। अब मेरी आयु 46 वर्ष है। मुझे कभी कभी बहुत ज़्यादा गर्मी, थकान और हाथ पैरों में दर्द भी महसूस होता है। यदि मेरा यूट्रस निकाल दिया गया था तो फिर मेरी तो मीनोपॉज की कोई कंडीशन ही नहीं होनी चाहिए थी, परंतु फिर भी मेरे साथ इस तरह से हो रहा है। मैं थायराइड की टैबलेट भी लेती हूँ 50 mg में। नाखून में भी लाइन लाइन सी नज़र आती है और आगे से फट जाती हैं। क्या ये भी उसी का कोई लक्षण हो सकता है? हाथों पर बहुत ज़्यादा तिल भी हो गए हैं आगे के हिस्से पर, कोहनी से पहले, और बाल भी बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। सुझाव दें, धन्यवाद।
2: एक्चुअली इन्होंने जो बताया, इनकी उम्र 46 साल है, पर इनका जो यूट्रस का जो सर्जरी हुई है, जो यूट्रस निकाला गया, वो आज से 10 साल पहले, मतलब कि 36 साल की उम्र पे निकाला गया। उसके 2 साल बाद शायद इनकी ओवरीज जो थी
0: जी,
2: वो उससे पहले निकाली गई है ना, एक ओवरी निकाली गई। तो बेसिकली ये समझने की बात है कि जो मेन फंक्शन था ओवरी का, वो एक ओवरी से काम चल रहा था। और जहाँ तक इनका ये क्वेश्चन है कि यूट्रस निकाल दिया तो ये मीनोपॉज के सिम्टम नहीं होने चाहिए, बल्कि ये बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन में सोचना चाहिए कि अगर यूट्रस एंड ओवरीज निकल गई हैं तो डेफिनेटली ये सर्जिकल मीनोपॉज कहलाता है, खास करके जब ओवरी अपना काम करना बंद करती हैं, जो हमने बात की, जो मैडम ने अभी डॉक्टर रेणुका ने बताया।
1: मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी, जब सर्जरी एंडोमेट्रोसिस की करते हैं तो दोनों ओवरीज निकालते हैं, आपकी एक ओवरी या वो निकाल नहीं पाए होंगे, नहीं तो एक सर्जरी एंडोमेट्रोसिस की सर्जरी में ओवरीज निकालनी चाहिए। ओवरीज के बहुत फायदे हैं, लेकिन एंडोमेट्रोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमें ओवरी निकालनी पड़ती है।
2: हाँ, तो उसमें जैसे मैडम ने शुरू में ही बताया था कि जो ओवरी के जो फंक्शन है, जो हॉर्मोन्स बनाती हैं, वो इनकी, सपोज इन्होंने एक ओवरी इनकी बच भी गई थी तो थोड़ा बहुत फंक्शन बचा होगा, पर उसके बाद जो इनके मीनोपॉज के जो सिम्टम्स हैं वो आने शुरू हुए होंगे। तो उस वजह से जो अभी ये जो बता रही हैं कि इनको इस तरीके की जो परेशानियां होनी शुरू हो रही हैं, जो मीनोपॉजल सिम्टम्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि इन्हें नहीं होना चाहिए था। इन्हें डेफिनेटली, जब एक तो इनका एज भी वो आ गया, और दूसरा इनके केस में तो सर्जिकल मीनोपॉज हुआ है, मतलब कि सर्जरी के थ्रू वो निकाली गई हैं, तो उसमें डेफिनेटली मीनोपॉज तो

0: अटेन कर ही लिया इन्होंने।
1: ऐसे केस में हम कैसे पता लगाते हैं कि अगर आपकी एक ओवरी छोड़ी गई है, जो आप इतनी हिस्ट्री दे रहे हो कि हिस्ट्री छोड़ वो काम कर रही है या नहीं, एक किस्म का टेस्ट कराते हैं जिससे पता चलता है कि वो जो छोड़ी गई ओवरी है वो अब काम कर रही है या नहीं। वो भी काम नहीं कर रही तो फिर आपके सिम्टम्स मेनोपॉज से एट्रीब्यूट कर सकते हैं बाकी चीज़ें रूल आउट करने के लिए। आपका थायरॉयड, अब आपने बताया दवाई खाते हो, बट क्या उससे अब TSH आपका नॉर्मल लेवल में है या नहीं? और जो आप हाथों पे नाखूनों में उंगली बता रहे हो, आपको एनीमिया है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं आपको सलाह दूंगी, या जो भी आपके डॉक्टर हैं वहाँ जाके एक बारी आप दिखा के अपनी पूरी एक टेस्ट करवाएं कि पता रहे कि आपका कौन सा सिम्टम किस वजह से हो रहा है। और अगर बहुत सारी परेशानियाँ हैं तो उसमें देर इज ऑल्टरनेटिव, आपको ट्रीटमेंट दे के आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी बेटर कर सकते हैं।
2: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर, हेलो।
3: नमस्कारम।
2: नमस्कारम जी, आपका नाम, आप कहाँ से?
3: मेरठ से बोल रहा हूँ
2: जी, बताइए क्या प्रश्न है आपका?
3: हाँ, हमारी महिलाओं को एक बीमारी होती है ल्यूकोरिया वाइट डिस्चार्ज, तो मेरा पूछना है कि ल्यूकोरिया क्या है और मेनोपॉज स्टेज के बाद भी ये होता है, और क्या इसके कॉम्प्लिकेशन है और क्या ट्रीटमेंट है, कृपया विस्तार से बताएं।
1: ल्यूकोरिया बेसिकली वजाइनल डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है। हर एक डिस्चार्ज एबनॉर्मल या इन्फेक्शन वाला नहीं है। हाँ, कैंसर में भी डिस्चार्ज हो सकता है, बदबू वाला पानी आना कैंसर की निशानी भी है। मीनोपॉज में अलग किस्म का डिस्चार्ज होता है, इरिटेशन और सूखापन होने की वजह से होता है, वो अलग चीज़ है। लिकोरिया तो एक सिम्टम है कि अब आम तौर पर क्यों बोला जाता है लिकोरिया है, डिस्चार्ज हो रहा है, तो वो किस वजह से है? हेल्दी डिस्चार्ज भी होता है और इन्फेक्शन वाला भी होता है, इरिटेशन की वजह से भी होता है, एलर्जिक भी होता है, तो उसका जो वजह है उसको ट्रीट भी किया जा सकता है। हर डिस्चार्ज गंदा नहीं होता, हर एक डिस्चार्ज इन्फेक्शन का नहीं होता।
2: और वो साथ में पूछे थे कि इसके मेनोपॉज के बाद भी होता है?
1: मेनोपॉज के बाद मैंने ये बताया जिसको GSM बोलते हैं, वो सूखने नीचे वजाइना, सूखने की वजह से, इरिटेशन की वजह से,
0: जो हम बात करते हैं जेनिटो यूरिनरी सिंड्रोम ऑफ मेनोपॉज,
1: GSM होता है। बाय एंड लार्ज इन्फेक्शन और सब कम हो जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सेक्सुअल एक्टिविटी कम हो जाती है आफ्टर मेनोपॉज, बट नीचे का सूखापन होना बढ़ जाता है।
2: डॉक्टर सीमा, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे?
0: हाँ, बेसिकली जो हम बात कर रहे थे जेनिटो यूरिनरी जो सिंड्रोम होता है मेनोपॉज का, उसमें यही होता है कि जैसे ड्राइनेस हो गई, नीचे जो लाइनिंग है वजाइना की वो पतली हो जाती है, उसमें जिस तरह का डिस्चार्ज, ल्यूकोरिया की बात जो हो रही है, ल्यूकोरिया आम भाषा में जो है महिलाएं ये सोचती हैं कि जो गंदा पानी आने की जो बीमारी है उसको ल्यूकोरिया कहते हैं, पर हम जब एग्जामिन करते हैं तो हम ये जान सकते हैं कि वो एक फिजियोलॉजिकल, मतलब कि नॉर्मल डिस्चार्ज है, या पैथोलॉजिकल है, बीमारी की वजह से है। जैसा कि मैडम डॉक्टर इनिको ने बोला कि किसी भी तरीके का डिस्चार्ज हो सकता है, इवन कैंसर में जैसे फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होता है, गंदा बदबूदार पानी, खून में मिला हुआ पानी जो आता है, उसको भी हमें देखना होता है कि वो भी रिलेटेड टू ल्यूकोरिया ही है।
1: मेनोपॉज में अगर बदबूदार पानी जा रहा है तो ये कैंसर का साइन होता है, और जरूर जाके डॉक्टर को दिखाना है, ये चीज़ नॉर्मल ना माने, एंटीबायोटिक्स नीचे लगाने से ये ठीक नहीं होता, डॉक्टर को दिखा के आपको टेस्ट करवाना चाहिए।
2: डॉक्टर, जैसे कि पहले आपने बात करी थी हॉट फ्लैशेस की, तो ये हॉट फ्लैशेस क्यों होते हैं और इन्हें कैसे नियंत्रित किया जा सकता है?
0: ये हॉट फ्लैशेस जो मैं बता रही थी कि बेसिकली कुछ सेकंड्स के लिए होता है, जैसे कि आप कहीं पर भी बैठे हुए हैं और आपको सडनली एकदम ऐसे लगेगा कि बहुत ज़्यादा शरीर से गर्मी का महसूस होना, और बहुत तेज़ आपके जैसे चेहरे पे लाल हो जाता है, एकदम से आपको ऐसा फील होगा कि आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी है। तो उसको जो ठीक करने का जो है, एक तो नेचुरल तरीके हैं कि हम उन्हें बताते हैं कि आप थोड़ी ठंडी जगह पे रहिए, गर्म एटमॉस्फेयर को अवॉइड करना है आपको उस पर्टिकुलर एज में। दूसरा जो पेय पदार्थ जैसे हैं कि आप ठंडे पेय पदार्थ लें, आपके अंदर अगर जैसे कुछ और उससे रिलेटेड जैसे कि थायराइड, अभी बात की थी कि थायराइड है, अगर आपको हाइपर थायराइडिज्म है तो भी आपको गर्मी लग सकती है, तो उसका इलाज कराएं। अगर आपको अनीमिया है या कुछ भी रिलेटेड जो बीमारियाँ हैं उनका साथ के साथ इलाज कराएं, डाइट अच्छी लें, मल्टी विटामिन्स लें और न्यूट्रिशनल डाइट लें, मतलब कि बैलेंस डाइट खाएँ, और पानी खूब पिए, मतलब दिन में कम से कम 8 गिलास के करीब पानी उन्हें पीना चाहिए।
2: तो ये जो मूड स्विंग्स होते हैं या चेंजेस हम फील करते हैं, तो क्या ये हार्मोन्स चेंज होने की वजह से, हार्मोनल इम्बैलेंस है, क्या वजह है इसकी?
1: हाँ, ये हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बॉडी में धीरे धीरे कम होकर फिर बंद हो जाते हैं, इस वजह से ये बॉडी में ये चेंजेस आते हैं।
2: और अक्सर देखा जाता है कि नींद की प्रॉब्लम मेजर प्रॉब्लम हो जाती है, कि महिलाएं कहती हैं मुझे रात को नींद नहीं आ रही, तो उसके

0: लिए क्या किया जाए?
1: हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये इनफैक्ट जब 40 साल की उम्र में देखा गया कि आपकी स्लीप डिस्टरबेंस बढ़ जाती है। सबसे ज़्यादा सिम्टम्स अगर ट्रांजिशन फेज में देखा जाए तो ये स्लीप डिस्टरबेंस का है। तो इसको टैकल करने के लिए स्लीप हाइजीन होता है कि आप सोने से पहले चाय, कॉफ़ी ये सब ना पिए, ये मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करें, टीवी ज़्यादा नहीं यूज़ करें, और अपना जो बेडरूम है, जो बेड है, सिर्फ सोने के लिए इस्तेमाल किया जाए। आमतौर पर लोग क्या करते हैं, वहीं पे खाना खा रहे हैं, वहीं पे सब काम कर रहे हैं दिन में बैठे। तो जो बेड का यूज़ है वो सिर्फ सोने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। और उसके अलावा है, यू शुड हैव अ मतलब बेडशीट्स चेंज करें, डार्क रूम हो, एग्रीवेटिंग चीज़ें अवॉइड करें, झगड़ा, एक्सरसाइज उस टाइम पे ना करें, तो उस तरह आपको अच्छे से नींद आएगी। और अगर ये चीज़ें ना वर्क करें तो फिर ऑब्वियसली मेडिसिन हैं उसको नींद देने की, दवाइयाँ हैं।
0: और स्मोकिंग एंड अल्कोहलिज्म का भी बहुत बड़ा रोल है इसमें, कि अगर उससे रिलेटेड कुछ है तो वो भी आपको छोड़ देना चाहिए, किसी भी तरह का एडिक्शन नहीं होना
1: जो
0: चाहिए।
1: स्लीप है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको रिजुविनेट करती है। जो आप दिन भर काम करते हो, आप रात को सोते हो तो आप रिफ्रेश होते हो, तो अगले दिन जब जब सो के उठ रहे हो तो आपको रिफ्रेश होना चाहिए एक नए दिन के लिए। अगर अच्छी नींद नहीं आई अगले दिन, आप फिर थके हुए हो रहे हो तो क्रॉनिक फिटीग बन जाता है, जिससे आपकी इरिटेशन, आपकी वर्क परफॉर्मेंस सब कुछ डिटेरियट होती है। तो अच्छी तरह सोना, जो एवरेज अराउंड 8 आवर्स, वेरी करता है फ्रॉम 6 to 9 आवर्स, बट अच्छे से नींद आनी चाहिए। स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिफ्रेश होने के लिए।
0: पर अक्सर कहते हैं कि मीनोपॉज के बाद वेट गेन की प्रॉब्लम भी हो जाती है, तो उसके लिए कैसा लाइफस्टाइल फॉलो करें?
1: बिल्कुल सही, वेट गेन बहुत सीरियस इशू है, स्पेशली हमारी कंट्री में, जिसको वैसे भी दिल्ली को ओबीस कैपिटल माना जाता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब मीनोपॉज हो जाए, नॉर्मली 40 साल के बाद बॉडी का कोई अंग नहीं बढ़ता। अगर आप उतना ही खाते रहोगे तो कहाँ वेट बढ़ेगा, आपका मिड सेगमेंट ओबेसिटी बढ़ जाएगी, आपकी जो वेस्ट है वो बढ़ जाएगी। वो सबसे ख़राब साइन है फॉर फ्यूचर कार्डियक प्रॉब्लम्स, फॉर योर नी प्रॉब्लम्स। हर एक जितना 1 किलो वेट आपके नी पे, बहुत 4 या 5 गुना वेट डालता है, नी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। तो वेट आपको बढ़ाना नहीं है। और अगर आपको डाइट अपनी खानी है तो कार्ब्स कम, कार्बोहाइड्रेट्स कम करो, प्रोटीन्स बढ़ाओ, एक्सरसाइज करो, बॉडी को ट्रिम एंड फिट रखिए, ताकि जो भगवान ने एक्स्ट्रा लॉन्गविटी बढ़ाई है आपकी, 20 साल एक्स्ट्रा हम सब जी रहे हैं, तकरीबन 90-100 एक्सपेक्टेड है अर्बन एरियाज में लाइफ, तो वो आखिरी टाइम आपका फिट और हैप्पी निकले, ना कि किसी पर डिपेंडेंट या बेड रिडन।
0: जी, साथ में जैसे कि अभी आपने कहा कि जोड़ों का दर्द, ये सारी प्रॉब्लम्स भी हो जाते हैं, तो बोन्स भी वीक हो जाती हैं, तो डॉक्टर सीमा आप क्या कहेंगी इस पर?
2: बोन्स वीक होने का, जैसा कि अभी डॉक्टर रेणुका बात कर रही
0: जी
2: थी कि वेट बढ़ेगा, क्योंकि अगर आप डाइट एंड एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन अपने एक पर्टिकुलर एज के बाद, क्योंकि मेटाबॉलिज्म डेफिनेटली स्लो डाउन होता है, आप एज के साथ थोड़े स्लो होते ही हैं। आपने ये नोटिस किया होगा कि
0: जी
2: यंग एज में जो आपके अंदर फुर्ती और जो आपकी तेज़ी होती है वो डेफिनेटली एज के साथ थोड़ी कम होनी शुरू होती है। तो आपको वीक में 5 घंटे एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। 5 घंटे से मेरा मतलब है कि आप पर डे या तो हाफ एन आवर कर लें या 45 मिनट्स कर लें, वीक में 5 दिन कर लें। तो उससे, और वेट बियरिंग एक्सरसाइजेस का बहुत रोल है मीनोपॉज में, कि आप जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें वेट बियरिंग का ध्यान रखें, कि जो एक्सरसाइज है वो वेट बियरिंग हो, वो कार्डियो प्रोटेक्टिव भी होती है और आपका मसल मास भी अच्छा रखती है वो। तीसरी चीज़ जो बोली गई कि वेस्ट सरकमफ्रेंस, वेस्ट सरकमफ्रेंस का बहुत बड़ा रिलेशन पाया गया है हार्ट डिजीज से रिलेटेड एंड ओवरऑल हेल्थ से, मतलब लिपिड प्रोफाइल एंड वो सब भी उससे रिलेटेड होता है। लड़कियों में जो PCOS की प्रॉब्लम है उसमें भी हम बोलते हैं कि वेस्ट सरकमफ्रेंस ठीक करें। तो वेस्ट के लिए आपको क्या करना है कि आपको जो हमने बात की कि न्यूट्रिशनल डाइट लेनी है, फुल ऑफ न्यूट्रिशन होनी चाहिए। न्यूट्रिशन में मेन आपको फोकस रखना है कि आप प्रोटीन्स ज़्यादा लें, कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि आलू है और चावल है, चीनी है, इस तरीके की चीज़ों को थोड़ा रिड्यूस करें अपनी डाइट में। और अगर आप एग खाते हैं, फिश खाते हैं, तो उनका इंटेक थोड़ा आप बढ़ा सकते हैं, और सोया बीन्स हैं, इस तरीके की चीज़ों से थोड़ा सा आपकी बॉडी ज़्यादा अच्छा रेस्पॉन्ड करेगी। एंड जो इम्पॉर्टेंट एक चीज़ बोली कि आपको एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। एंड तीसरी चीज़ जो कि कहा कि अगर आपको इनसे भी नहीं फ़र्क पड़ रहा तो थोड़े से आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, जैसे कि कैल्शियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बोन हेल्थ के लिए। दूसरा, मल्टी विटामिन्स दे दिए जाते हैं, और एक विटामिन डी। जो हाँ, वॉक की जो बात है वो मैं बताना चाहूँगी कि आप सुबह और शाम में किसी भी टाइम वॉक कर सकते हैं। तेज सन की रेज जो है बॉडी पे ना डालें, क्योंकि यूवी इफ़ेक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है बॉडी पे। तो आप अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग में वॉक करें, हाफ एन आवर टू वन आवर वॉक कर सकते हैं, दैट इज़ गुड फॉर यू।
1: इसमें एक चीज़ में और ऐड करना चाहूँगी, वॉकिंग को एक्सरसाइज ना समझें।

0: सबसे लोएस्ट लेवल की एक्सरसाइज वॉकिंग है, आप उसके ऊपर आप बैलेंस एक्सरसाइजेस कीजिए, एरोबिक एक्सरसाइज करो, क्योंकि ओल्ड एज में देखा गया है हम बैलेंस करना धीरे धीरे मुश्किल हो जाते हैं, लोग स्लिप कर जाते हैं, बैलेंस नहीं कर पाते। तो नहाना की भी प्रक्रिया है कि जब आप कपड़े बदलते हैं तो बाथरूम में ना करें, बाहर आके अपने रूम में आके बैठ के चेंज करें, तो बाथरूम स्लिप करने के चांसेस होते हैं, वहाँ पे रेलिंग होनी चाहिए, प्रोटेक्टिव रेलिंग। ये ओल्ड एज पे फ्रैक्चर अवॉइड करने की बहुत सारी चीज़ें हैं जो जान बचा सकती है लिटरली।
1: एक मैसेज है हमारे पास, ये है टीना फ्रॉम भोपाल, ये लिखते हैं, डॉक्टर, इफ द लेडी हैड अ हाइस्टेरेक्टमी एट द एज ऑफ 44-46 विल शी हैज अ मेनोपॉज सिम्टम्स? इफ येस, हाउ डिफरेंट वुड दे बी? इफ नो, हाउ डिफरेंट वुड दे बी?
0: नो, द क्वेश्चन इज हिस्टेक्टमी। हिस्टेक्टमी मीन्स, देखो, यूट्रस निकालना और मेनोपॉज में फ़र्क है। मेनोपॉज कहते हैं ओवरीज नहीं काम कर रही हैं। यूट्रस अगर आप निकाल दो कि पीरियड तो बंद हो जाएंगे, लेकिन ओवरीज अगर काम कर रहे हैं, दिस इज नॉट मेनोपॉज, इट्स नॉट सर्जिकल मेनोपॉज। ओवरीज निकाल दो, उसको सर्जिकल मेनोपॉज कहते हैं। तो आपकी यूट्रस निकल गया, पीरियड

0: different would they be? If no, how different would they be?
1: No, the question is hysterectomy. Hysterectomy means, देखो, uterus निकालना और menopause में फ़र्क है. Menopause कहते हैं, ovaries नहीं काम कर रही हैं. Uterus अगर आप निकाल दोगे, period तो बंद हो जाएंगे, लेकिन ovaries अगर काम कर रहे हैं, then this is not menopause. It's not surgical menopause. Ovaries निकाल दो, उसको surgical menopause कहते हैं. तो आपकी यूट्रस निकल गया, पीरियड बंद हो गया, ओवरी फिर भी काम करें तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी.
2: एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी दर्शकों के लिए कि जो मीनोपॉज है, सभी महिलाओं को ऐसा लगता है कि महीना बंद हो गया तो मीनोपॉज हो गया. खास करके जैसे यूट्रस निकला तो आपको माहवारी बंद हो जाएगी, पर अगर आपकी ओवरीज इंटैक्ट हैं अंदर तो ओवरी काम कर रही है, ओवरी आपके हार्मोन्स आपकी बॉडी को दे रही है, तो वो मेनोपॉज नहीं माना जाएगा. उसको हम कहेंगे कि आपका यूट्रस निकल गया, आपका पीरियड स्टॉप हो गए, बट इट इज़ नॉट मेनोपॉज. ये आपका सिर्फ सर्जरी हुई है हिस्टेक्टमी. अगर आपकी ओवरीज भी दोनों निकाल दी जाती हैं, देन वी कॉल इट सर्जिकल मेनोपॉज.
0: डॉक्टर सी रेणु को आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे?
1: मैं ये बोलूँ कि मीनोपॉज जो होता है ना, कई तरीके के होते हैं. जैसे एक सर्जिकल हो गया, एक आपका नेचुरल मीनोपॉज हो गया. कभी कभी कैंसर की दवाइयाँ देते हैं तो भी मीनोपॉज हो जाता है, कीमोथेरेपी मेडिएटेड मीनोपॉज. कभी कभी प्री वक्त से पहले मीनोपॉज भी हो सकता है. जिनको 40 साल से पहले हो गया, उनको खास तौर पे दवाई की ज़रूरत है कि वो जल्दी बूढ़ा ना हो. उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं मसल वीकनेस के, फ्रैक्चर होने के.
0: इस पर बातें हम और भी करेंगे कि जैसे आपने कहा जिनको जल्दी हो जाता है तो वो क्या करें क्या ना करें, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक प्यारा सा गीत.

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं मेनोपॉज समस्याएं और समाधान पर। तो डॉक्टर आपसे ये जानना चाहेंगे कि POI का नाम आजकल काफी सुना है, तो ये है क्या?
2: हाँ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है शिल्पा। एक्चुअली POI आजकल काफ़ी कॉमनली देखा जा रहा है। POI इज़ बेसिकली फुल फॉर्म में अगर बोलें तो प्री मैच्योर ओवेरियन इनसफिशेंसी, मतलब कि ओवरी ने प्री मैच्योरली काम करना बंद कर दिया। अब वो प्री मैच्योर किसको कहते हैं? वो हम यूजुअली जो हमारा बाय डेफिनेशन है वो हम कहते हैं कि अगर 40 साल से पहले महिला को महीना आना बंद हो जाए, वो किसी भी उम्र में हो सकता है, रिप्रोडक्टिव एज, जैसे कि हम मानते हैं कि जैसे ही मीनार्की शुरू होती है, मतलब कि पीरियड आना शुरू होते हैं, उसके बाद अगर महिलाओं को किसी भी पर्टिकुलर एज में महीना आना बंद हो जाता है 6 महीने से ज़्यादा, तो उसे हम प्री मैच्योर ओवेरियन इनसफिशेंसी के क्राइटेरिया में रख सकते हैं। पर उसका जो हम फाइनल जो डायग्नोसिस बनाते हैं उसके लिए एक ब्लड टेस्ट होता है जो कि हार्मोन का टेस्ट होता है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि वो एक्चुअल प्री मैच्योर ओवेरियन इनसफिशेंसी है या नहीं है। आजकल काफ़ी केसेस देखने को मिल रहे हैं POI के, और इसका जो इम्पैक्ट है उसके कई सारे इम्पैक्ट हैं, जो कि अभी हमने बात की कि मेनोपॉजल सिम्टम्स जो होते हैं महिलाओं के, उसी तरह के उनमें भी होते हैं और ज़्यादा सीवियर फॉर्म में हो सकते हैं, अर्ली एज पे होते हैं। दूसरा इससे रिलेटेड जो, क्योंकि यंग एज में हो रहा है तो इनफर्टिलिटी से भी ये इसका काफ़ी अच्छा जो कोरिलेशन देखा गया वो देखा गया है, क्योंकि मैं आजकल एक तो लेट मैरिज और दूसरा डिलेड चाइल्ड बियरिंग की वजह से कई बार महिलाएँ ऐसे उस पर आ जाती हैं कि उनको पीरियड ही आना बंद हो गया, जो कि उनके पास अभी प्रेगनेंसी भी नहीं हुई है। तो उस चीज़ को हम इस तरीके से टैकल करते हैं कि पहली चीज़ तो हम उनको ये देखते हैं कि उनकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, वो किस पॉइंट के लिए हमारे पास आई हैं। बेसिकली या तो उनको सिम्टम्स हो रहे हैं मेनोपॉज से रिलेटेड, पीरियड बंद हुआ है, तो डेफिनेटली कोई भी महिला अगर उसको 40 साल से पहले पीरियड बंद हो जाता है तो एक एंग्जाइटी होती है कि ये क्यों हो गया। ये तो एक बड़ी नेचुरल सी चीज़ है कि वो परेशान होंगी कि हमें पीरियड इतनी जल्दी क्यों बंद हो गया, और ख़ास करके उन महिलाओं को जिनके कि अभी फैमिली भी कंप्लीट नहीं है और उनको पीरियड बंद हो गया तो और ज़्यादा एंग्जाइटी का इशू बन जाता है वो। तो उसमें बेसिकली जो है हम दो तरीके के ट्रीटमेंट करते हैं। एक तो हमें ये देखना है कि उसका कारण क्या है प्रीमैच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी का, कि वो जेनेटिक भी होता है। कई बार क्या होता है, जैसे अगर आपके परिवार में फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, फर्स्ट डिग्री से मेरा मतलब जो खून का पहला रिश्ता, मतलब कि माएँ और बहनों में सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, अगर आपके बहन या माँ में जल्दी उम्र में हुआ है तो आप में भी रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है जल्दी मेनोपॉज होने का। दूसरा, इसके कुछ सिंड्रोम्स हैं जिनको कि हम जेनेटिक सिंड्रोम्स कहते हैं, उनमें भी ये हो सकता है। तीसरा, कुछ एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट्स भी हैं जिनकी वजह से ये हो सकता है। चौथा, सर्जिकल, जो कि हमने बात की कि सर्जरी हो गई उसकी वजह से हो सकता है। तो इस तरीके के बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से ये हो सकता है, कारण हमें ढूंढना होता है। एंड उससे रिलेटेड जो भी अभी मैंने बात की कि किस वजह से वो हमारे पास आई हैं, उससे रिलेटेड ही उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो ट्रीटमेंट बेसिकली उसी तरीके का है जैसा कि मेनोपॉज में होता है, एक्सेप्ट फॉर उन लोगों में चेंज आता है जिनको कि फर्टिलिटी का भी इशू है।
1: तो डॉक्टर सीमा, आपने हमें बताया कि प्री मेनोपॉज ट्रीटमेंट और इसके क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन अगर पोस्ट मेनोपॉज ब्लीडिंग होती है तो डॉक्टर रेणुका आप हमें बताइए क्या उसका इम्पैक्ट रहता है।
3: हाँ शिल्पा, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मेनोपॉज होने के बाद कोई भी ब्लीडिंग होना नॉर्मल नहीं है, ठीक है। अगर एक साल हो गया आपका पीरियड बंद हुए, उसके बाद कोई भी ब्लीडिंग एबनॉर्मल है और जिसको हम पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग कहते हैं, उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाके जरूर चेक कराएं। नॉर्मली अराउंड 10% में कैंसर निकल सकता है या कैंसर की शुरुआत हो सकती है। जैसे आप सबको पता है कैंसर शुरुआत में अर्ली स्टेजेस में तो बहुत अच्छा उसका इलाज है, लेकिन अगर इसको निग्लेक्ट कर दो आप तो धीरे धीरे कैंसर फैल जाता है, फिर आगे का प्रोग्नोसिस उतना ही ख़राब हो जाएगा। तो अगर किसी औरत को पीरियड बंद होने के बाद ब्लीडिंग हो रही है, चाहे स्पॉटिंग ही क्यों ना हो, तो उसी टाइम जाके डॉक्टर की राय जरूर ले।
1: एक मैसेज है हमारे पास, ये लिखती हैं, हाय मैम, देहरादून से। मेनोपॉज के बाद मुझे अल्सर की बीमारी हो गई है, तो बोन्स हेल्दी रहे, इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे, उसके लिए क्या खाएं?
2: अल्सर गैस्ट्रिक

0: अल्सर की बात कर रही हैं ये?
1: वो तो उन्होंने मेंशन नहीं किया, उन्होंने
0: क्या गैस्ट्रिक अल्सर, तभी शायद इन्हें खाने में प्रॉब्लम हो रही होगी
1: जी।
0: तो बेसिकली तो गैस्ट्रिक अल्सर का तो इन्हें इलाज कराना होगा। डायग्नोसिस कैसे बना है, शायद एंडोस्कोपी हुई होगी, उसी से हुआ होगा। तो पहले तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखा के गैस्ट्रिक अल्सर का इलाज कराएंगे। उसके बाद जो ट्रीटमेंट है वो तो हमारा सेम रहता है, एक्सेप्ट फॉर कि हम कोई भी ऐसी चीज़ नहीं, जो मेनोपॉजल थेरेपी है जिसके कि हम बात कर रहे थे कि हार्मोन थेरेपी जो दी जाती है, जिनमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है या लीवर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, उनमें हम ओरल ड्रग्स मतलब मुंह से देने वाली दवाइयां ना देके जेल भी लगा सकते हैं, क्रीम्स लगा सकते हैं, कुछ स्प्रे आते हैं वो दे सकते हैं, तो ताकि उनके स्टमक पे वो इफ़ेक्ट ना आए। तो अगर इनको उस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो दूसरे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं जो कि ये इस्तेमाल कर सकती हैं हार्मोन थेरेपी के लिए।
1: और साथ में वो ये भी पूछ रही हैं कि बोन्स हेल्दी रहे और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहे, उसके लिए क्या खाएं?
2: उसके लिए आप इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए विटामिन्स लें, एक्सरसाइज करें, और हड्डियां स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप अपना अगर एज कितनी बताई इन्होंने अपनी,
1: इन्होंने एज मेंशन नहीं की,
2: तो अगर एज अगर आपकी ज़्यादा है तो एक टेक्सा स्कैन होता है जिससे बता सकते हैं कि आपका हड्डियां कितनी स्ट्रॉन्ग है। और बेटर है कि प्रिवेंशन में जाएं, अगर आप एक्सरसाइज करते रहेंगे, ठीक से अच्छा से कैल्शियम खाएंगे, विटामिन डी लेते रहेंगे, तो आपकी बोन स्ट्रॉन्ग रहेंगी। एक नियम होता है, इस्तेमाल करते रहो चीज़ की, अगर नहीं इस्तेमाल करोगे तो वो वीकन होगी। जिस तरह हेड दिमाग अपना यूज़ करते रहो तो दिमाग चलता रहेगा, शरीर टांगे आप चलाते रहें तो स्ट्रांग रहेंगी। ये अगर आप सीढ़ियाँ लिफ्ट मत इस्तेमाल कीजिए, अगर सीढ़ियाँ चल सकते हैं तो सीढ़ियाँ चलें, अनलेस कि आपकी डॉक्टर नी की प्रॉब्लम की वजह से मना करे। सीढ़ियाँ चढ़ना इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज, अगर लिफ्ट है तो और सीढ़ियाँ हैं तो प्रेफर सीढ़ियाँ, दैट्स अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज।
1: डॉक्टर आपने अभी दिमाग की बात करी, तो इस एज में अक्सर मेनोपॉज के बाद मेमोरी लॉस का इशू बहुत मेजर होता है, काफ़ी लोग कहते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए और उसकी वजह क्या है?
2: मेनोपॉज में नॉर्मली MCI जिसको बोलते हैं, माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होती है, लेकिन कभी कभी ये अल्जाइमर्स की शुरुआत भी होती है। अल्जाइमर्स इज सीवियर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, तो ये आपको डॉक्टर को दिखा के एक बार चेक कराना है कि कुछ चीज़ें तो नॉर्मल है, कुछ चीज़ों को भूलना वो तो एज के साथ साथ होता है, उसको भी रेक्टिफाई करने के तरीके आप कोई नई चीज़ें सीखिए, गाना सीखिए, म्यूज़िक ले, इन चीज़ों से दिमाग की कनेक्शंस बने रहते हैं और स्लो डिक्लाइन होता है। और ज़्यादा डिप्रेशन की वजह से भी कॉग्निटिव डिक्लाइन होता है, अगर रात को आप ढंग से सोए नहीं उससे भी आपका मेमोरी लॉस ज़्यादा होगा। तो आपको दिखाना है कि क्या चीज़ कितना आपका कॉग्निटिव डिक्लाइन है और ये नॉर्मल में है, नॉर्मल में आ रहा है, और उसकी प्रिवेंशन कैसे की जाए।
1: अक्सर होता है कि महिलाएं सामान रख दिया भूल गई।
0: बेसिकली वही है कि आप जितना ज़्यादा एक्टिवेटेड रखेंगे, ब्रेन के साथ भी यही है, इट इज़ जस्ट लाइक ए गेम, आप जितना ज़्यादा ब्रेन को एक्टिवेट रखेंगे, आप अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, नए नए सम्स कीजिए या मैथ्स कीजिए या कोई भी पजल्स आते हैं वो कीजिए, मेमोरी गेम्स भी होते हैं जो कि आप कंटिन्यूसली रख सकते हैं अपने आप को कंटिन्यूटी में। जितना ज़्यादा एक्टिव रहेगा आपका ब्रेन, उतना ही कम चांसेस होते हैं उसमें मेमोरी लॉस होने के। और इसमें मेनोपॉज में एक खास चीज़ होती है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है, जैसे आपने बोला कि रखती चीज़ और भूल गए, लॉन्ग टर्म याद रहती हैं चीज़ें, पुरानी बातें सब याद रहेंगी, पर जो अभी अभी हुआ है वो भूलती हैं। तो ये बड़ी खासियत है मेनोपॉज में कि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस काफ़ी कॉमन होता है। तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि एक तो कैल्शियम की जो हम बात करते हैं, हाँ मैं वहाँ एक पॉइंट जॉइन करना चाह रही थी कि डाइट जो रिच इन कैल्शियम होती है उसमें जैसे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उनको ज़्यादा लें, सोयाबीन लें, और जैसे ये जो आते हैं जिनको मखाने कहते हैं, मखानों में अच्छा है फॉक्स सीड्स, और जो आजकल बहुत सारे सीड्स आ रहे हैं उनको आप तरीके तरीके से खा सकते हो हर चीज़ में डाल के, तो वो बहुत अच्छे हैं मेनोपॉज एज में। एंड एक और चीज़ जो कि हमने खुद स्टडी की थी हमारे हार्मोन क्लिनिक में, कि हमने उन्हें 6 कलर्स ऑफ डाइट दिए थे इन लंच एंड डिनर, एंड इट रियली हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन देयर जनरल वेलबींग। जैसे कि हमने बोला कि आपकी डाइट में 6 कलर का
1: जो कलर्स टू देयर लाइफ,
0: हाँ, एंड इट रियली हेल्प देम। आई डोंट नो व्हाट वाज द लॉजिक बिहाइंड बट रियली इट हेल्प्ड।
2: इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी, एक स्पेशल विटामिन है जिसको बोलते हैं सोशल विटामिन। जितना आप सोशली एक्टिव रहोगे, रिश्तेदारी में, दोस्तों में, फ्रेंड्स में, उतना आपका कॉग्निटिव डिक्लाइन कम होगा। ये देखा गया है कि जो लोग सोशली एक्टिव रहते हैं उनकी कॉग्निशन, उनकी स्लीप, उनका हर किस्म का डिक्लाइन स्लोअर होता है। तो दिस इज स्पेशल विटामिन टू बी सोशली एक्टिव।
1: यानी इस एज में आके हम कई बार सोचते हैं कि हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो गए, अब हम रिलैक्स करेंगे, तो रिलैक्स होते हैं तो बॉडी भी और ज़्यादा रिलैक्स

0: जल्दी है.
1: बिल्कुल, यूज इट और लूज इट, जो भी चीज उसको इस्तेमाल करो, नहीं तो धीरे धीरे जाएगी.
0: लेकिन ऐसे कौन से रेड फ्लैग साइंस हैं जिन्हें हमें लगता है कि हमें अब तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए?
1: जैसे बताया, एक बदबूदार पानी का जाना, ब्लीडिंग होना, या आपकी इतनी ज़्यादा हड्डियों में कमजोरी होना और वक्त से फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर होना, जरा सी बात, जरा सा चोट लगी आपके और आपकी हड्डी टूट जाए, ये सब एबनॉर्मल चीज़ें हैं. एकदम अचानक वेट लॉस होना, बिल्कुल ही ना सो पाना, टोटली भूल जाना कि रिश्तेदारी क्या है, मतलब बेटे का नहीं पता, ये अल्जाइमर्स की साइंस है. इन चीज़ें ये रेड फ्लैग्स हैं, जब जाके बिल्कुल आपको मेडिकल एडवाइस लेनी चाहिए.
0: बातें हम इस पर और भी करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत.

0: आगे भी जाने ना तू, मूड चाहे जैसा भी हो, गाने सुन के मूड हमेशा रिफ़्रेश हो जाता है। तो डॉक्टर रेणुका, आप हमें ये बताइए कि कोई ऐसी थेरेपी या इलाज है जिससे ये प्रॉब्लम्स ना हो?
1: देखो, एजिंग तो पार्ट ऑफ लाइफ है ना। देर इज़ नथिंग लाइक फेमिनिन फॉर एवर। कुछ लास्ट सीजन्स है, ये भी एक सीज़न है जिसको एक्सेप्ट करो। हम कब ट्रीटमेंट देते हैं? ट्रीटमेंट हम तब देते हैं कि अगर कोई सिम्टम इतना ज़्यादा सिवियर हो रहा है कि पेशेंट की लाइफ ख़राब हो रही है, तो उसमें शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट देते हैं। पूरे लाइफ ये नहीं कि खाते रहने हार्मोन्स। तो वी जो MST है, जिसको मेनोपॉजल हार्मोन थेरेपी होती है, जिन पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा सिवियर हॉट फ्लैशेज हो रहे हैं या नीचे की खारिश और रिकरेंट इन्फेक्शंस हो रही है, तो उनको हम हार्मोन्स देते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। कभी कभी हमें प्रोलॉग भी करना होता है। इसके साथ साथ जो हम ट्रीटमेंट देते हैं वो है हड्डियाँ मजबूत करने के लिए। जिनके हड्डियाँ कमज़ोर हैं, जिनको रिस्क है फ्रैक्चर होने का, तो उनकी हड्डी मजबूत करने का ट्रीटमेंट दिया जाता है। मसल्स जिनकी वीक है, उनको एक्सरसाइज बताई जाती है, और स्लीप और कॉग्निशन उनके हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके लिए स्पेशल मेनोपॉजल क्लिनिक्स रन होती हैं इंडिया में। जो इंडियन मेनोपॉज सोसाइटी है, वो इसको काफ़ी सारी जगह पे उन्होंने मेनोपॉज क्लिनिक्स बना रखी हैं। दिल्ली में भी ईच गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड मोस्ट ऑफ द प्राइवेट हॉस्पिटल्स आर नाउ इधर स्टार्टेड और दे आर स्टार्टिंग मेनोपॉजल क्लिनिक्स, जहाँ पे मेनोपॉज के लिए जो खास डाइट का ध्यान, कैंसर स्क्रीनिंग और रिस्क असेसमेंट, वो सब किया जाता है। और हर पेशेंट को एडवाइस दी जाती है कि किन इनमें से कुछ लोग होते हैं जिनको हार्मोन्स देने पड़ते हैं, कुछ नॉन हार्मोनल्स के लिए होते हैं, और कुछ लाइफ स्टाइल चेंजेस के लिए। लाइफ स्टाइल चेंजेस तो हर किसी को बेसिकली सिखाए जाते हैं कि क्या क्या करें ताकि बीमारी ना हो, और अगर है तो वक्त से पहले उसका पता रहे।
0: डॉक्टर सीमा, आप कुछ कहना चाहेंगे इसमें?
2: हाँ, मैं ये बताना चाह रही थी कि जो मीनोपॉज हार्मोन थेरेपी के क्लिनिक्स जो बने हुए हैं, उसमें जो महिलाएं हैं जिन्हें सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं मीनोपॉज के, तो मैं उन्हें ये बताना चाहूँगी कि हम अप टू 10 ईयर्स ऑफ मीनोपॉज जो होता है, तब तक ही हार्मोन थेरेपी का ट्रीटमेंट उनको देते हैं। उसके बाद हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, और ये ट्रीटमेंट जो है 3 to 5 ईयर्स के लिए यूजुअली हम चलाते हैं। पर इसमें जो एक ख़ास चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि कैंसर ब्रेस्ट एंड कैंसर एंडोमीट्रियम, इन केसेस को हमें खास ध्यान रख के हार्मोन थेरेपी देनी होती है, क्योंकि जो हार्मोन्स दिए जाते हैं वो भी उसी के ऑलमोस्ट नेचुरल सब्स्टिट्यूट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के हार्मोन्स होते हैं। तो उनसे रिलेटेड जिस तरह के भी कैंसर्स हैं उनकी स्क्रीनिंग भी की जाती है। तो कोई भी महिला अगर हार्मोन्स ले रही है और वो ये सोचती है कि बहुत अच्छा उसको इफ़ेक्ट आ रहा है, तो वो अपने आप से उसको कंटिन्यू ना करती रहें, उनको रेगुलरली फॉलोअप में रहना होता है। इसी की वजह से हार्मोन थेरेपी जो क्लिनिक्स हैं ये चलाए गए हैं, क्योंकि ज़्यादा एज होने की वजह से वो भीड़ भाड़ वाली OPD नहीं अटेंड कर पाती हैं, तो उनके लिए स्पेशल क्लिनिक्स हैं जिनमें 25-30-40 पेशेंट्स होते हैं और उनको बहुत आराम से तसल्ली बख्श तरीके से देखा जा सकता है।
0: तो ये जो आपने HRT हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के बारे में बताया है, तो इसकी भी कोई स्पेसिफिक एज होती है?
2: हाँ, जो मैंने बताया कि आपको जब भी मीनोपॉज हुआ है, जैसे कि अभी मैडम ने बात की कि सर्जिकल मीनोपॉज हो सकता है या नेचुरल मीनोपॉज हो सकता है। नेचुरल मीनोपॉज की हमने बात की थी कि वो 45 से 55 के बीच कभी भी हो सकता है। सर्जिकल मीनोपॉज तो जब आपकी ओवरीज निकाल दी तो सर्जिकल मीनोपॉज हो जाएगा। तो उसके बाद में एट एनी टाइम मरीज़ जो होते हैं उनको सिम्टम्स आ सकते हैं और उनको ज़रूरत पड़ सकती है हार्मोन थेरेपी की। कई लोगों में नहीं भी ज़रूरत पड़ती, कई लोग नेचुरली इन चीज़ों को, जैसे कि उनकी हमेशा से डाइट बहुत अच्छी रही हो, कैल्शियम रिच डाइट लेते हो, हेल्दी एक्सरसाइजेस करते हो, इस तरीके की जिनका लाइफस्टाइल होता है, कई बार उनमें ये सिम्टम्स बहुत मिनिमल भी होते हैं या नहीं भी होते हैं। तो उनको कई बार हार्मोन्स की ज़रूरत नहीं भी पड़ती है, सिर्फ उनका जो है हम स्क्रीनिंग करते रहते हैं टाइम टू टाइम कि

0: में जो मीनोपॉज से रिलेटेड या अनरिलेटेड एज रिलेटेड जो डिजीज़ हैं उनकी स्क्रीनिंग हो सकती है?
1: कई बार होता है फीमेल्स में देखा जाता है जो उनकी मंथली साइकिल होती है, तो जैसे 20-21 डेज में आती है, कई बार किसी मंथ 15 डेज में आ गई, कई बार 10 डेज में भी आ जाती है, कई बार लेट भी हो जाती है, तो कई बार वो उस पर सोचने लगती हैं, तो उनको उस पर क्या करना चाहिए, डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करना चाहिए या खुद कुछ करना चाहिए?
0: हाँ, इसमें एक बड़ा सिंपल प्रिंसिपल है, 8 साइकिल्स पर ईयर आप एक तो मेंस्ट्रुअल कैलेंडर बना के रखिए, आपके पास डायरी हो, दीवार पे लाइन लगा सकते हो, या फ़ोन में ऐप आती है जिसमें कि आप अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल्स का कैलेंडर बना के रख सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 साइकिल्स अगर आपको साल में आ रही हैं, मतलब 8 बार अगर आप ब्लीड कर रहे हैं, तो वो सेटिस्फैक्ट्री होता है। पर उसका जो इंटरवल है उसे हम ऐसे देखते हैं, 21 से 35 दिन। मान लीजिए आपको 1 तारीख को पीरियड आया और आपको दूसरा पीरियड फिर 21 तारीख को शुरू हुआ, तो हम उसके लिए ज़्यादा नहीं बॉदर करते, या 35 दिन बाद आया, मतलब 5 तारीख के बाद आया, तो हम कुछ नहीं करेंगे। पर अगर उसके भी बाद आया, बार बार ऐसा हो रहा है, या उससे भी पहले आया, 21 दिन से पहले,
1: अगर जैसे 1 को किसी का आया तो उसके बाद 10 को आ गया, तो
0: हाँ डेफिनेटली
1: तो वो सही है, गलत है?
0: वही गलत है, वही मैं बता रही हूँ। अगर 21 दिन से पहले आ रहा है और बार बार आपके साथ ये रिपीट हो रहा है, तो आपको डेफिनेटली इसका ट्रीटमेंट चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी है जिसकी वजह से कि आपका जो ब्लीडिंग है वो बार बार हो रही है, तो उसका तो चेकअप होना बनता ही है, तो उसके लिए तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा।
1: एक मैसेज है हमारे पास, ये लिखती है, हाय अनीता, आई एम 46, हेल्दी, अनमैरिड एंड अ वर्जिन। ट्वाइस इन द लास्ट फ्यू ईयर्स आई हैड प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग अबाउट अ मंथ ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस विच स्टॉप्ड आफ्टर 21 डे हार्मोनल कोर्स। आई हैड अ टोटल थायरॉयडेक्टमी एट 24। I have no hot flashes or sleep issues. I consume about 1 liter of milk curd daily. Is it enough?
2: हाँ जी अनीता, अभी तो आप बहुत यंग हो, 46 के हो, और अभी तो मेनोपॉज हुआ नहीं है, अभी तो आप ट्रांजिशन फेज में हो, यानी आपको पीरियड की खराबी हो रही है, तो अभी तो लॉन्ग लाइफ अहेड, यू शुड रिमेन हेल्दी। तो अब बस ये टाइम आपसे अब से ध्यान रखना है। अब आप देखो आपको मेनोपॉज कब होता है, इसका नेक्स्ट पीरियड आपका कैसे आ रहा है, उसके बाद जैसे ही आपको सिम्टम्स आने लगे, पीरियड या ज़्यादा आता है या पीरियड नहीं भी आता, तब आप अपना लाइफस्टाइल ठीक करें, तब एक्सरसाइज करें, अब यहाँ से आप अपना ध्यान रखना शुरू कीजिए।
1: मीनोपॉज के बाद अक्सर एक हमारा मेंटली हम सोचते हैं कि हम ओल्ड हो गए या हमारी एज फैक्टर हो गया, तो लेकिन ऐसे में सभी महिलाओं के लिए मैं जानना आपसे जानना चाहूँगी, आप कहें बताएं कि वो अपने आप को एक्टिव, हेल्दी और एनर्जेटिक कैसे रखें, कैसा लाइफस्टाइल वो फॉलो करें?
0: वो आपने खुद ही बता दिया, आपने एक सेंटेंस में खुद ही बता दिया, एक्टिव, हेल्दी, एनर्जेटिक। एक्टिव रहें, हेल्दी डाइट खाएं, और एनर्जेटिक मतलब कि हर जगह आपको सोशली भी एक्टिव रहना है, और अपनी लाइफ में आपको मतलब सबके साथ इंटरेक्ट करके चलना है, सो दैट आपका ब्रेन भी उतना ही फंक्शन करे। एक चीज़ यहाँ मैं ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि मीनोपॉज में हम लोग ये भूल जाते हैं कि ब्रेस्ट की हेल्थ, तो ब्रेस्ट कैंसर भी काफ़ी कॉमन है इंडिया में, तो उसकी स्क्रीनिंग भी ज़रूर करा लें सभी महिलाएँ। ब्रेस्ट कैंसर के लिए सबसे ज़रूरी है कि वो ना उनको सिम्टम भी हो तब भी वो ब्रेस्ट स्क्रीनिंग ज़रूर करा लें।
1: और कुछ ऐसी डाइट जो उनको डेली में खानी चाहिए, और कुछ ऐसी चीज़ जो उनको अवॉइड करनी चाहिए?
2: देखिए ऐसा होता है, जब मीनोपॉज होता है ना, बॉडी में चेंजेस आते हैं, जो एक वुमेन है वो अपनी ब्यूटी को, बालों को, स्किन को बहुत इंपॉर्टेंस देती है, तो उनको लगता है धीरे धीरे हमारे बाल झड़ रहे हैं, हमारी स्किन में वो टेक्स्चर, वो ग्लो नहीं रहा, तो कुछ कुछ तो होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बाल का झड़ना, चल नहीं पाना, वो सब एबनॉर्मल है। कुछ आप कंट्रोल कर सकते हो, कुछ प्रिवेंट कर सकते हो, लेकिन एजिंग तो होगी, एक थोड़ा सा डिक्लाइन बॉडी में, एनर्जी में होता है, वो नॉर्मल चीज़ है।
1: और कई बार होता है महिला होते हैं ऐसी प्रॉब्लम्स को घर पे शेयर करने में हेजिटेट करती हैं, या डॉक्टर के पास जाने में भी हेजिटेट करती हैं, तो उनके लिए आप लोग क्या मैसेज देंगे?
2: देखिए मेनोपॉज ये टाइम है जिसमें अब अपना ध्यान रखना है, सब कुछ आपको नहीं मालूम होता, तो इसमें जरा सी अगर आपको कुछ तकलीफ हो रही है तो आप जाके डॉक्टरी सलाह लीजिए, डॉक्टर्स अवेलेबल हैं तो उनकी कंसल्टेशन लीजिए। हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल दिल्ली में मेनोपॉजल ओपीडी रन करता है, आप वहाँ जाके उनका फ़ायदा उठा सकते हैं।
0: देखो दिल्ली में तो एक और ख़ास चीज़ है कि कलकत्ता और बॉम्बे की तरह मेल गायनकोलॉजिस्ट बहुत कम है दिल्ली में, तो जो महिलाओं को जो हेजिटेशन होती है कि मेल डॉक्टर के पास नहीं जाना, दिल्ली में तो ये बहुत एडवांटेज है इनको। ऑल दो मैं ये कहूँगी कि डॉक्टर का आपको जेंडर नहीं देखना, आप डॉक्टर इज़ डॉक्टर, आप जाएं खुल के अपनी बात बताएं और अपना एग्जामिनेशन या जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो कराएं।

0: एटलीस्ट दिल्ली वाली महिलाओं के लिए तो ये फ़ायदा है कि यहाँ पे गायनकोलॉजिस्ट मेनली जो हैं फीमेल्स हैं।
1: तो आप हमारी सभी श्रोताओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे?
2: ये मैसेज देना चाहेंगे कि ज़िंदगी का हर सीज़न एंजॉय कीजिए। ये मेनोपॉज भी ज़िंदगी का एक सीज़न है, उसको भी एंजॉय कीजिए। और ये बेस्ट पार्ट होना चाहिए, ये एक शाम की तरह है, ज़िंदगी की शाम है जो सबसे सुंदर होनी चाहिए, सेहतमंद और सुंदर।
1: और डॉक्टर सीमा, आप?
0: मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हेल्दी रहें और हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज और अपनी लाइफ को कलरफुल बनाएं। कलरफुल से मेरा मतलब है कि हर तरीके से कलरफुल, अपना जो सोशल लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, क्योंकि अब आपकी एज ऐसी हो गई है कि आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर से ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी होती हैं। अब आप अपने ऊपर ध्यान दें और अपनी सेहत पे ध्यान दें और ये देखें कि आप किसी भी बीमारी से ग्रसित ना हो। और प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। सो जैसे ही आपको लगता है कि कोई भी चीज़ की आपको जानकारी मिल रही है, उससे जितना आप फ़ायदा उठा के अपने हेल्थ का ध्यान रख सकती हैं, आप उतना मैक्सिमम यूटिलाइज़ करें।
1: तो श्रोताओं, मेनोपॉज ज़िंदगी का अंत नहीं बल्कि जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत है। ज़रूरत है अपने शरीर में हो रहे बदलावों को समझने की, अपनी सेहत को प्राथमिकता देने की और सही समय पर विशेषज्ञ की सलाह लेने की। तो अपनी सेहत की आवाज़ सुनिए, क्योंकि एक स्वस्थ महिला सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को मजबूत बनाती है। आज कार्यक्रम में हमारे साथ रही दो महिला रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर रेणुका मलिक, प्रिंसिपल कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, और डॉक्टर सीमा प्रकाश, सीनियर कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट जीडीबी हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। आप दोनों डॉक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा की।
0: शिल्पा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चंस पूछे और ऑलमोस्ट पूरा मेनोपॉज हमने कवर कर लिया आज।
2: शिल्पा शुक्रिया, ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम रहा, लगता है हमारे श्रोताओं को भी उतना ही पसंद आया होगा जितना हमें पसंद आया।
1: दोस्तों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, आप भी हमें ज़रूर मेल कीजिएगा। हमारा मेल आई डी है healthair@gmail.com। जाते जाते सभी महिलाओं के लिए एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, सबका ख्याल रखा है आपने, अब थोड़ा ख्याल अपना भी रखिए, क्योंकि आप भी उतनी ही ज़रूरी हैं। इसी के साथ मैं शिल्पा गुप्ता आपसे लेती हूँ अनुमति, फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई जानकारी के साथ आपके अपने रेडियो डॉक्टर में। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्कार।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: क्या बात है, क्या म्यूजिक सीखा। मैं कहा जी सत श्री अकाल, नमस्कार आदाब। एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी जलंधर दा रेनबो चैनल है ते शो तुसी सुन रहे हो अपना फेवरेट हेलो जलंधर। ते की हाल ने मेरे सोने शहर दे सोने लोको। उम्मीद है आज भी चाह गर्म होएगी, मूड मस्त होएगा ते ट्रैफिक ने तुहाडा इम्तिहान थोड़ा ही लिया होएगा। मैं तुहाडा अपना दोस्त आरजे जोरावर सिंह ते तुसी सुन रहे हो अपना फेवरेट शो जिदा नाम है जी हेलो जलंधर, जिथे गल्लां भी होणगियां, हासे भी होणगे, जानकारी भी मिलेगी ते नाल वजणगे तुहाडे मन पसंद गीत। जी हाँ, कहिंदे ने हासा ओह दवाई है जिसका ना कोई बिल आउंदा है ते ना ही कोई साइड इफेक्ट हुंदे ने। इसलिए अगले कुछ पलां लई टेंशन नूं छुट्टी दिओ, मुस्कान नूं ड्यूटी ते लगाओ ते साडे नाल जुड़े रहो। तां चलो जी आवाज़ थोड़ी उच्ची कर लो, मुस्कान होर भी वड्डी कर लो, क्योंकि शुरू हो रहा है हैलो जलंधर। मैं कहना एक बार मेरे नाल रल के करो, 3 2 1 हैलो जलंधर। हैलो हैलो जलंधर, भूआ भी नहीं, भूआ नूं ना भुल जाओ कितें। आ लो जी साडे नाल अज बहुत सारे करैक्टर्स होणगे, भूआ जी होणगे साडे नाल, चाचा जी होणगे, स्वीटू होएगा, मोंटू भी होएगा।
1: ਹੋਰ ਕੀ ਉਹ ਬਾਈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਮੌਜਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਲਾ ਦੇ ਫਿਰ ਬੂਚਿਕ।
0: ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਲਓ ਜੀ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਲ 'ਤੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੀਤ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਮਸਤੀ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਮਜ਼ੇ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਖੂਬ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ। 01 81 4 21 74 ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦਾ, 0 1 8 1 2 3 4 2 1 7 4 ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵੱਲ।

0: हेलो हेलो माइक चेक।
1: हाँ जी वेलकम बैक, जी वेलकम बैक, स्वागत है एक बार फिर तो एफएम बैटिक 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी जलंधर दा रेनबो चैनल है। तो तुसी अपना फेवरेट शो सुन रहे हो जिदा नाम है हेलो जलंधर। ते हेलो जलंधर दे विच साडे कोल कॉलर जुड़े ने, आइए पूछते हैं उनसे क्या नाम है उनका और कौन सा गाना सुनेंगे। और कहते साडी भूआ गुस्सा ही ना कर जी। हाँ जी भूआ जी, तुसी गल करोगे?
2: आहा करा जड़ा मेरे ना गल।
0: भूआ जी राम ना गल करो। हेलो हेलो, हाँ जी की हाल चाल जी, ठीक हो?
3: हाँ जी सर जी बहुत बढ़िया। भूआ जी ने ते चाचा जी ने भी नमस्कार, सत श्री अकाल।
0: वाह जी वाह,
2: नमस्कार पुत, नमस्कार है, ठीक है?
3: हाँ जी मैं ठीक है जी।
2: और पुत की चलदा?
3: हाँ कुछ नहीं, हुण तां बैठे तुहाडा रेडियो सुनी जांदे आ नाल।
2: वाह वाह शुक्र है शुक्र है पुत, तू वेख तेरे किन्नी सोहनी तेरी जबान है, ते कहा वेह चाचा जाए औखा ही होंदा रहा मेरे नाल। अच्छा की गल आ जे औखा होवा ना, है तू औखी होनी रहनी आ।
0: ओहो चाचा जी ना ना लड़ी दा नहीं हुंदा इदा, ठीक है
2: छड परा पुत, इन्हां दा ते लगा ही दा ना। ते पुत की काम करदा तू?
3: हां जी मैं पॉल बोलदा जी, सराबा नगर जलंधर तो।
2: अच्छा
3: साडी पेंट दी शॉप है, घरां दीवारां नूं रंग करदे आ, तुसीं दिलां नूं रंग करी जांदे, असीं घरां नूं रंग करी
2: जांदे। हाए धन्नवाद धन्नवाद, किते चाचे दे वी पेंट करदे, हटदा नहीं आ, नहाउंदा ही नहीं आ।
3: नहाउंदा नहीं, ज्यादा काला होया
2: ए, बुरा हाल होया पिया दा, काला तां नहीं टैनिंग होई पई आ। पर मेनू डराया जोरावर सिंह जेड़ा बड़ा शरारती, पिछे की चड़ेल जी लाती इन्हे, है मेनू जोरावर डराया ना कर। हाय रब्बा मेरा तां तरा ही कढ के रख दिता इन्हां ने। पुत तेरे नाल गल करके तां बड़ा शवाद ही आ गया।
0: एक मिनट अपना
3: भूआ
0: जी, भूआ जी एक मिनट मैं गल कर लां स्रोतिया नाल, कर लां।
2: हां कर लां कल पुत तू गल कर लां।
0: हां जी जनाब मैं कहा जी किहड़ा गाना सुनोगे तुसी?
3: गाना सर सुना दिओ, दिल दी गल, भूआ दे ते चाचे दी दिल दी गल, ते नाल जोरावर सिंह दे दिल दी गल।
0: हाय बिल्कुल जी बिल्कुल, तुहानूं गल सुनाउने आ जी दिल दी गल, कंठ क्लियर जी दा गाना, ते लाओ जी स्टे ट्यून्ड। थैंक यू जी, बड़ा अच्छा लग्गा तुहाडे नाल गलबात करके।
3: मेहरबानी शुक्रिया तुहाडा वी, धन्नवाद
0: जी। थैंक यू जी थैंक यू। हां भूआ चढ़ गया तेरा चाह ते उतर गया तेरा चाह।
2: हां केड़ा चाह उतरिया ते चढ़िया पोते, चाह चढ़े लैणे चाहीदे आ, जिंदगी तां ही खूबसूरत हुंदी आ। ते लै दा छकड़ी गल करी जांदा ते।

वेलकम बैक एफएम बैंड 102.7 मेगा हर्ट्स ते आकाशवाणी जलंधर दा ए रेनबो चैनल है ते तुसी अपना फेवरेट शो सुन रहे हो जी दा नाम है हेलो जलंधर।

0: एक मिनट आया ए आ हाय ओए ओए प्रावा
1: ओ माय गॉड यार, इन्हें तो कुछ नहीं हो सकता। सो आपां तां वेलकम बैक कर रहे हैं एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से आकाशवाणी जलंधर दा रेनबो चैनल है ते अपना फेवरेट शो तुसी सुन रहे हो जी दा नाम है हैलो जलंधर। हैलो जलंधर, हैलो जलंधर, हैलो जलंधर। तो मैं दसदा जी, ये मेरे लगता फील चक गए। मैं हूँ डॉन स्वीटू। एक मिनट इधर आई। हाँ जी दसू यार, ये की हरकत सी? और उत्ते तू रोशनदान ते की करन डिया ही? एक्चुअल मैं थोड़ी जी फील चक
0: थोड़ी जी फील चक गया ही। और कहड़ी फील चक है? और भरावा फील फूल इन्नी नहीं चक्की जी होंगी। हाँ तरा ही कट छे मेरे यार, उत्ते की करन डिया ही?
1: एक्चुअली मैनू ना इदा लग रहा सी, मैं ना घोड़े दे उत्ते चढ़िया होया तो मैं उहदी सवारी कर रहा। तबड़क तबड़क तबड़क
0: तबड़क तबड़क तबड़क तेरे कन्नां ते वज्जिया ना दौ जदों ते तू सीधा हो जाएगा बंदे वांगू। हाय हाय वे उधर कबलर आ कोई सुन लो उनू भी। आहो हेलो
2: हेलो,
0: सत श्री अकाल पुत।
2: सत श्री अकाल भुआ जी।
0: हाँ सत श्री अकाल। हाय नी मेरा ता जी सद के मेरा ता रूह ही खुश हो जाती, जिगरा वड्डा हो जाता जदों मैनू कोई सत श्री अकाल कहिंदा। हाँ अजकल दे जमाने च वेखो किन्ने संस्कार आ पुत जी, हुंदे रहो।
2: और भुआ जी क्या
0: पुत? मेरे ता हाल ठीक आ, पर आ जड़ा स्वीटू है ना ते उतो आ जड़ा चाचा आ इन्हां दा बुरे हाल कीते होया, जोरावर कुछ कहिंदा ही नहीं आ ते।
2: अच्छा जी,
0: की काम करदे हो?
2: मेरा काम भुआ शटर कोक दा।
0: शटल कोक ई की हुंदी आ?
2: रिंकू भगत बोलदा मैं भुआ।
0: रिंकू आ जिक्र करदा सी जोरावर, कहिंदे भी रिंकू भगत होणा दे फोन आउंदे बड़े ते बड़े फैन आ ते मैनू बड़ा चंगा लग्गा तुहाडे नाल गल करके। मतलब काम समझा मैनू पुत, करदा की आ?
1: मैनू
0: लगा पता नहीं पेट रखिया चिड़िया ते गला च पटे पाए।
1: ਭੂਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਰਿਆ ਹੀ ਆ ਵੈਸੇ।
0: ਚੱਲ ਕੋਈ ਨੀ ਪੁੱਤ, ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਚਾਹ ਪੀ ਲਾ, ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾ। ਹਾਏ ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੋ
2: ਚਾਚੀ? ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
0: ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਅਦਾਬ।
2: ਨਮਸਕਾਰ ਚਾਚੀ।
0: ਨਮਸਕਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਹੋਰ ਪੁੱਤ ਠੀਕ ਹੋ?
2: ਠੀਕ ਹੈ ਭੂਆ। ਚਾਚੀ ਤੂੰ ਸੁਣਾ।
0: ਚਾਚੀ ਨੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਚਾਚਾ ਬੋਲਣ ਡਿਆ ਯਾਰ, ਚਾਚੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਤਰਾਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਚਾਚੀ ਦਾ ਅਜੇ ਆਈ ਨੀ ਸਟੂਡੀਓ।

0: जी दोस्तों, चक दे इंडिया सैगमेंट शुरू हो चुकिया है। तो इस सैगमेंट विच तुहानू मिलेगी खेड जगत की हर वड्डी खबर। तो फिर देर किस गल दी। तो अज सब तो पहला खेड जगत की आप गल करांगे मनदीप, तो सब तो पहला अज नाम आंदा है फौजा सिंह।
1: फौजा सिंह
0: जी, तुहानू पता है कि पिछले साल एक न्यूज़ आई सी कि उन्होंने 99 साल की उम्र दौड़ना शुरू किया, तो 100 साल की उम्र उन्होंने मैराथन पूरी की। देखो 100 साल की उम्र।
1: वाह, मतलब जिहड़ी आपां ब्रेक तो पहला गल कीती ही लफ्ज़ जिहड़ा आपां पेश कीता ही और अपने लिसनर्स मोहरे, तो वाहिद जिहड़ा ओहदा प्राइम एग्जाम्पल आ।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ओहदे प्राइम एग्जाम्पल ने साडे फौजा सिंह, जिन्हां अज जे अज दे दिन सानू अलविदा आ के पिछले साल यानी। तो अज के इस सैगमेंट से आप सब तो पहला उन्होंने बारे गल करांगे जो जलंधर के ब्यास पिंड शान है, तो उन्होंने टर्बन टर्नाडो यानी मैराथन रनर बाबा फौजा सिंह के नाम नाल जाने जाता है। तो उन्होंने अज पहली बरसी भी है
1: जी। तो मैं हरनीत, वैसे मैं खुद हैरान हो गया दे सुन के ये, क्योंकि खेडा की दुनिया में असं अक्सर मतलब मैं यही सुनता हूं कि 35-40 साल की उम्र तक ना आते आते वे वे खिलाड़ी जो रिटायरमेंट ले लेंगे।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि होर भी मैं सुनिया, क्योंकि मेरे फेवरेट खिलाड़ी भी जिन्हें भी रहे हो मतलब 35-36 के आके मतलब उन्होंने बॉडी जवाब दे जाती है, तो फिर वो फिर प्रोफेशनली फिर रिटायरमेंट ले लेंगे, फिर वो उन्होंने बॉडी उन्होंने सपोर्ट नहीं करती।
0: बिल्कुल
1: ठीक है, इन देयर माइंड चाहे वो मतलब नंबर वन है, बट बॉडी उन्होंने जी होंगी
0: अलाउ
1: नहीं करती होंगी, उन्होंने साथ नहीं दी। पर फौजा सिंह ने दुनिया नूं दस्या कि उम्र तो सिर्फ कैलेंडर का एक नंबर है, असल तो ताकत तो रूह हुंदी है। हैरानी की गल वैसे।

दोस्तों खुश रहने लिए वड्डे कारणां दी लोड़ नहीं हुंदी। कई बार एक सच्ची मुस्कान, किसी अपने दा फोन, एक प्यारा गीत जां किसी दी दिलों कीती दुआ भी सारा दिन सोना बना दिंदी है। अज जे तुहाडे दिल विच कोई बोझ है, कोई चिंता है जां कोई अधूरापन है तां कुछ पलां लई उहनूं एक पासे रख दो। डूंघा साह लो, गहरा साह लो, अपने आप नूं कहो मैं हारिया नहीं, मैं सीख रहा हाँ, मैं रुकिया नहीं, मैं तैयार हो रहा, क्योंकि रात जिन्नी भी लंबी होवे ना सवेर दा सूरज उस तो भी ज़्यादा यकीनी हुंदा है। ताओ अज दे इस सफर विच असी इकट्ठे मुस्कुरावांगे, कुछ नवां सीखांगे, दिल नूं छूण वालियां गल्लां करांगे अते सुणांगे ओह गीत जो जिंदगी नाल प्यार करना होर भी सोहणा बना दिंदे ने, सिखाउंदे ने जिंदगी दे ओह फलसफे जिहड़े शायद आम करके असी कई सालां विच सीखणे हुंदे ने। जदों सोहणे गीत सुणदे आ ते ओह फलसफे इको गीत विच ही समझ आ जांदे ने। मुस्कुराते रहो, उम्मीदां नूं जिंदा रखो, अपने सुपनिया ते विश्वास रखो ते हमेशा याद रखो जिंदगी खूबसूरत है, बस इहनूं दिलो जीण दी लोड़ है। चलो फिर एक नवी मुस्कान, एक नवी उम्मीद ते ढेर सारे प्यार नाल शुरू करदे हां। लव यू जिंदगी।

वेलकम बैक दोस्तों, एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज से आकाशवाणी जलंधर दा रेनबो चैनल है। तो तुसीं अपना शो इंजॉय कर रहे हो जिदा नाम है लव यू जिंदगी, जिस विच असीं तुहानूं मोटिवेशनल स्टोरीज सुनाउने आ और उन्हां स्टोरीज तो असीं कुछ ना कुछ जरूर सीखते हैं। सो अगली स्टोरी साडे दरमियान इदां है कि एक लड़की का नाम देव्या, उस कहानी का नाम देव्या दी मुस्कान। एक कुड़ी सी जिहदा नाम देव्या सी, वह हजे भी एग्जिस्ट करती है वैसे, वह नाम देव्या है। उसकी सब तो वड्डी खासियत यह है कि वह हर हालत विच मुस्कुराना जानती सी। लोग पुछदे देव्या तू इन्नी खुश किवें रहनी है, देव्या हस के कहती मैं टेंशन नूं भी कहनी हाँ, पहला लाइन में लग मेरे को हसन का नंबर पहला है। एक दिन उहदे कोल इक्को वेले कई काम आ गए, किसी ने कहा कि यह काम भी कर दे, दूजे ने कहा वह भी तेरे बिना नहीं होना मेरा काम भी कर दे, तीजे ने कहा एक छोटी जी मदद होर कर दे। देव्या हस के बोली लगता अज मेरे को 24 घंटे नहीं 48 घंटे मन के सारे ने काम दिता है। सारे ही हस पे। उन्हें घबराने की बजाय एक कागज़ कढ़िया ते कम्मां दी सूची बना ली, पहला जरूरी काम किए फिर बाकी शाम तक सारे काम मुका दिते। जेडे प्रायोरिटी बेसिस दे उत्ते काम करने सी उन्हें पहला वो किते, बाकी सारे करते। दोस्त सारे हैरान।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

वेलकम बैक दोस्तों, एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी जलंधर दा ई रेनबो चैनल है ते तुसी अपना खूबसूरत जड़ा शो एंजॉय कर रहे हो जिदा नाम है लव यू जिंदगी। ते बड़ा शुक्रिया कि तुसी

नमस्कार, शाम दे 7 बज चुके ने। वेला हो गया एफएम न्यूज़ हेडलाइंस दा। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे विच कई वड्डे सुधारां दा ऐलान कीता। कहा, खादा नूं हुण रवायती बंद माल गड्डियां दी बजाए विशेष तौर ते डिजाइन कीते कंटेनरां विच लिजाया जावेगा। भारत अते बरतानिया दरम्यान व्यापक आर्थिक अते व्यापारक समझौता कल तो लागू होवेगा। राष्ट्रीय महिला कमिशन दे चेयरपर्सन विजया रहाटकर कल नूं मोगा अते 16 जुलाई नूं बठिंडा

नमस्कार आदाब सत श्री अकाल एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज ते प्रोग्राम फिल्मी दुनिया लेके थोड़ा दोस्त आरजे ललित सोनी हाजिर हो चुका है स्टूडियो घड़ी इस वक्त समा 7:05 ते 9 सेकंड हो रहे हैं प्रोग्राम फिल्मी दुनिया जिद गलबात होंगी है बॉलीवुड अते बॉलीवुड जगत की खास शख्सियत की जिंदगी ते आधारित गल होंगी है फिल्मों की गल होंगी है एक्टर की गल होंगी है उन्होंने महान दिग्गज कलाकारों की जिन्होंने फिल्मी पर्दे के उपर एक वक्रा मुकाम हासिल किया और फिल्मी दुनिया के अपनी वक्री पहचान बनाई सो अज का प्रोग्राम बेहद खास हो जा रहा क्योंकि अज प्रोग्राम फिल्मी दुनिया के बहुत ही खास शख्सियतों की जिंदगी से आधारित असी गलबात करांगे सो प्रोग्राम फिल्मी दुनिया के अज असी गल करन जा रहे हैं बॉलीवुड के उस बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्टर की जिसनों गजलों का बादशाह कहा जाता है एक ऐसा शख्स जिसने बतौर फौजी जंग के मैदान के गोलियां चलाईयां पर संगीत नाल उसकी बेपना मुहब्बत ने उसनू संगीत की दुनिया के ले आउंदा और फिल्म इंडस्ट्री के नाल जुड़े होने के बावजूद भी उसनू फिल्मों के जाने तो रोकया गया पर फिर भी उस शख्स ने उस शख्सियत ने उस महान म्यूजिक डायरेक्टर ने फिल्मी जगत दे विच एंट्री कीती ते अपना एक वखरा मुकाम हासिल कीता जी हां दोस्तों गल कर रहे हैं मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर मदन मोहन कोहली दी यानी कि मदन मोहन जी बारे अज उन्हां दी डेथ एनिवर्सरी ते जाणांगे उन्हां दी जिंदगी

102.7 FM रेनबो ते प्रोग्राम फिल्मी दुनिया दे विच गलबात चल रही है मदन मोहन कोहली जी दे बारे, यानी कि मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर मदन मोहन जी दे बारे। 25 जून 1924 नूं बगदाद दे विच राय बहादुर चुन्नीलाल जी दे घर जन्मे मदन मोहन नूं बचपन विच ही संगीत दा शौक रहा और कहा जांदा है कि संगीत दी प्रेरणा उन्हां नूं अपनी मदर तों मिली।

जो कि खुद भी एक लेखिका सन। 1943 के मदन साहब के पिता ने कहा कि उन्होंने जड़ा आर्मी के जाना चाहिए है। मदन जी ने अपने पिता की जे कहते आर्मी ज्वाइन कर ली, पर उन्होंने दिल जड़ा संगीत के नाल इस कदर जुड़िया हुआ सी कि वह ज़्यादा देर तक फौज के जड़ा वो अपनी सेवावान नहीं दे सके। और इसी करके ही वह कुछ साल बाद फौज की नौकरी छड़ के वापस आ गए तो लखनऊ के ऑल इंडिया रेडियो लिए काम करन लगे। इतने ही उन्होंने मुलाकात उस्ताद फयाज खान बेगम अख्तर, उस्ताद अली अकबर खान, तलत महमूद वर्गे दिग्गज कलाकारों हुई और जिन्हों के नाल मिलकर उन्होंने जिंदगी बदल गई।

मदन मोहन जी एक्टर बनने का सुपना लैके मुंबई आ गए, पर किस्मत उन्होंने संगीतक दुनिया दे विच ले आई। मदन मोहन जी ने कुछ समा एस डी बर्मन, श्याम सुंदर म्यूजिक डायरेक्टर उन्होंने असिस्ट किया और 1948 फिल्म शहीद विच उन्होंने गाने का मौका मिलया। उस तो बाद 1950 की खूबसूरत फिल्म आंखें दे विच उन्होंने बतौर म्यूजिक डायरैक्टर काम करने का मौका मिलया और इस फिल्म का संगीत काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध होया। उस तो बाद उन्होंने 1952 की फिल्म खूबसूरत, 1953 की फिल्म दाणा पानी दे विच संगीत देने का मौका मिलया और 1956 दे विच मदन जी ने फिल्म भाई भाई दे लई अपना संगीत दिता। यानी कहने का मतलब यह है कि फिल्मी दुनिया दे विच जदों उन्होंने एंट्री की तो वह कदम दर कदम अगे वधदे गए तो जिस मंजिल की उन्होंने तलाश सी, जिस मुकाम ते पहुँचना चाहते सी, हौली हौली उस मुकाम के उपर पहुँचने लग पे। तो हर एक स्रोते दे, हर एक लिसनर दे, हर एक दर्शक दे दिलों के उपर जड़ा उन्हां दी म्यूजिक जिहड़ी आ खास छाप बन गई।

102.7 FM रेनबो ते प्रोग्राम चल रहा है फिल्मी दुनिया और प्रोग्राम दा आनंद माण रहे हो अपने दोस्त ललित दे नाल और प्रोग्राम दे विच गल कर रहे हैं म्यूजिक डायरेक्टर मदन मोहन जी दे बारे। सो मदन मोहन साहब ते लता मंगेशकर दी जुगलबंदी काफ़ी ज़्यादा पसंद की गई और लता जी दे बहुत सारे हिट गीतों दे विच जिहड़ा संगीत ओह मदन साहब दा रहा। सो उन्हां दीआं बेहतरीन गज़लां कारण ही लता जी ने मदन साहब नूं संगीत दा बेताज बादशाह कहा। सो एक बार मशहूर संगीतकार नौशाद साहब जी ने इन्ने ज्यादा मदन साहब तो इंप्रेस होए तो उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान यह कह दिता कि मदन साहब के संगीत दे नाल सजे फिल्म अनपढ़ दे जिन्ने भी फिल्मी गीत सन वो बहुत ज्यादा पसंद किए गए। सो इन्हां दे विच एक गीत सी प्यार की आबरू ते आपकी नज़रों ने समझा। उन्होंने यह कहा कि नौशाद साहब ने कि मैं अपना पूरा संगीत इस फिल्म के गीत संगीत के उपर कुरबान कर सकता है। सो ये खासियत सी मदन मोहन साहब की, ये अपने संगीत के नाल अपनी म्यूजिक दियां धुनां दे नाल हर किसी के दिल दे विच कर कर गए।

मदन साहब जी काफी निराश रहन लगे। फिर जो लता मंगेशकर ने उन्होंने इस गल का अफसोस किया कि उन्होंने लता जी ने कहा कि मेरे लिए सब तो वड्डा अवार्ड यही है कि लता वर्गी वड्डी गायिका मेरे नाल काम कर रही है और मेरे लिए जड़ा वो गीत गा रहे हैं, सो मेरे लिए यह सब तो वड्डा अवार्ड है। सो बाकी उन्होंने सब तो वड्डा अवार्ड यही है कि लोग अज भी उन्होंने प्यार नाल याद कर रहे हैं और हमेशा अपने चुनने वालों के दिलों में वो बने रहेंगे।

प्रोग्राम फिल्मी दुनिया दे विच गलबात चल रही है रोशन लाल नागरथ यानी कि रोशन जी दे बारे। सो गीत तो पहला मैं गल की सी कि मुंबई दे विच रोशन जी का शुरुआती सफ़र काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा। काफ़ी संघर्ष तो बाद उन्होंने फिल्मों दे विच संगीत देन का मौका मिलया ते उन्हां दियां संगीत दे नाल सजियां होईयां धुनां विच शास्त्री संगीत की मिठास लोक संगीत की सादगी अते दिल नूं छू लैण वाली रूहानियत का अनोखा मिलाप सी। ते इसे संघर्षपूर्ण सफर दौरान उन्हां दी मुलाकात हुंदी है मशहूर निर्माता निर्देशक केदार शर्मा जी दे नाल। सो केदार जी ने रोशन जी नूं 1949 की फिल्म नेकी और बदी दे लई बतौर संगीतकार जिहड़ा आ ओह काम करन दा मौका दिता। हालांकि ये फिल्म जिहड़ी आ कुछ खास ज़्यादा कमाल नहीं दिखा पाई पर केदार शर्मा जी ने यह जान लिया सी कि रोशन जी दे संगीत दे विच कुछ तां जादू है और अगे जाके इन्हां दे संगीत दे विच बहुत सारे गीत जिहड़े ने ओह बनणगे। सो इसे करके ही उन्होंने 1950 दे विच आई फिल्म बावरे नैण दे विच एक बार फिर तो रोशन जी नूं संगीत तैयार करन दा मौका दिता ते इस बार रोशन जी ने कमाल ही कर दित्ती और इस फिल्म दा संगीत सुपरहिट रहा और ये फिल्म रोशन जी दे करियर दी टर्निंग पॉइंट साबित हुई। तो आओ सुनदे हां इसे फिल्म दा एक खूबसूरत गीत ते मिलदे हां इस गीत तो बाद रोशन जी दियां जिंदगी दे नाल जुड़ियां होर भी गल्लां बातां दे नाल।

रोशन जी ने अपने करियर के दौरान मोहम्मद रफ़ी, मुकेश और तलत महमूद, लता मंगेशकर, आशा भोसले वर्गे दिग्गज सिंगर्स के नाल काम किया और रोशन जी ने ही मशहूर गीतकार इंदिवर ते आनंद बख्शी साहब नूं काम करन दा मौका दिता सी और रोशन जी नूं 1963 दे विच आई फिल्म ताज महल दे लई बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर दा अवार्ड दे नाल सन्मानित भी किया गया और कहा जाता है कि इस फिल्म दा मशहूर गीत जो वादा किया निभाना पड़ेगा, इस गीत नूं जिहड़ा साहिल लुधियानवी वल्लों लिखा गया सी और इस फिल्म इस गीत दा संगीत तैयार करन दे लई रोशन साहब नूं जिहड़ा लगातार 3 दिन तक मेहनत करनी पई सी। वो कहा जाता है कि रोशन साहब 3 दिन तक इस गीत दा संगीत करन दे लई सुते नहीं सन। सो उन्हां दे ज़हन दे विच वक्खरियां अखर वक्खरियां धुनां आ रहियां सी किहड़े गीत दे विच किहड़े संगीत दे विच इस गीत नूं पिरोया जाए। सो बाद दे विच जदों इह गीत बण के तैयार होया तां सदा लई अमर हो गया। 1967 दे विच महज 50 साल की उम्र दे विच इह महान फनकार इस दुनिया नूं अलविदा कह गया। फिल्म अनूठा ते अनोखी रात वर्गियां फिल्मां उन्हां दियां आखिरी फिल्मां रहियां और रोशन साहब जिहड़ा इस फानी संसार नूं जिहड़ा अलविदा कह गए। दोस्तों, रोशन साहब एक संगीतकार नहीं सन बल्कि अजिहे फनकार सन जिन्हां ने सुरां नूं रूह दी आवाज़ बना दिता। उन्हां दियां धुनां दे विच शास्त्रीय संगीत की डुंगियाई ते कवाली की रूहानियत ते भावनावां की मिठास इक्को वेले सानूं महसूस हुंदी है। सो उन्हां दे छोटे जे फिल्मी करियर के दौरान जिन्हें भी उन्होंने बेहतरीन नगमे जड़े ने गीत संगीत जड़ा दिता उन्होंने गीतों के जिन्हों संगीत दे विच परोया वो अज भी संगीत प्रेमियों के दिलों के वस रहे हैं और रोशन वांग रोशन जी अपने नाम दे वांग हमेशा फिल्म इंडस्ट्री दे विच रोशनी विखेरते रहेंगे अपने संगीत के जरिए और अपने संगीत के जरिए

नमस्कार, स्टूडियो करते समय 8:30 हो रहे हैं। तो वेला हो गया FM न्यूज हेडलाइंस का। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे विच कई वड्डे सुधारां दा ऐलान कीता। कहा, खादा नूं हुण रवायती बंद माल गड्डियां दी बजाए विशेष तौर ते डिजाइन कीते कंटेनरां विच लिजाया जावेगा। भारत अते बरतानिया दरमियान व्यापक आर्थिक अते व्यापार समझौता कल तो लागू होवेगा। राष्ट्रीय महिला कमिशन दे चेयरपर्सन विजया राहटकर कल नूं मोगा अते 16 जुलाई नूं बठिंडा दा दौरा करनगे। महिलावां दी सुरक्षा अते विभागां दे आपसी तालमेल नाल संबंधित वख-वख प्रोग्रामां विच शमूलियत करनगे। पंजाब सरकार ने युद्ध नशियां विरुद्ध मुहिम दौरान नशा तस्करां दी 847 करोड़ रुपए की जायदाद नूं जब्त करके ढाया। 73,000 नशा तस्करां नूं गिरफ्तार कीता। पंजाब सरकार ने श्री गुरु रविदास जी महाराज जी दे 650वें प्रकाश पुरब लई 80 करोड़ रुपए राखवे रखे। सूबे भर में 650 गुरु रविदास बगीचियां अते 6.5 लाख बूटे लाए जाणगे। जल स्रोत मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने कहा है कि सूबा सरकारी नहरी पानी नूं 100% टेलां तक पहुंचाउणा यकीनी बनाएगी। भारत सरकार दे सूखम छोटे अते दरमियान उद्यम MSME मंत्रालय अधीन लुधियाणा दा कौमी SC ST हब कल नूं पटियाला विखे SC ST भाईचारे दे उद्यमियों लई एक उद्यमी जागरूकता विशेष विक्रेता विकास प्रोग्राम कर रहा है। पंजाब पुलिस ने अमृतसर विखे 2 वख-वख मामलों विच 5 तस्करां नूं एक AK-47 राइफल असले अते 30 किलोग्राम हैरोइन समेत गिरफ्तार किया। पंजाब बिजनेस ब्यूरो ने मोरिंडा विखे तैनात सहायक सब इंस्पैक्टर अवतार सिंह 30

102.7 FM रेनबो ते 102.7 तो इलावा न्यूज़ ऑन AIR ऐप ते प्रोग्राम रंगला पंजाब दा आनंद माण रहे हो अपने दोस्त ललित दे नाल। स्टूडियो घड़ी ते समा 8:41 ते 4 सैकेंड हो रहे ने ते प्रोग्राम रंगला पंजाब दे विच गलबात चल रही है पूरन भगत दी महान गाथा दे बारे, पूरन भगत दी लोक गाथा दे बारे, पूरन भगत दे किस्से दे बारे। सो गीत तो पहलों गल की थी कि राजा सलवान अपने दोवें राणियां समेत जोगी पूरन नू मिलन जांदा है ते जिथे पूरन अपनी मां इच्छरा नू मिलदा है ते इच्छरा नू जदों पूरन छोंदा है ते इच्छरा दे नैणा दी जोत वापस आ जांदी है ते उधर लूणा जोगी बने पूरन तो पुत्र दी दात दी फरियाद मंगदी है ते पूरन उस तो पुछदा है कि तुहाडा तां पहला ही एक पुत्र है फिर तुहानू होर पुत्र दी की लोड़ है। ते ए सुन के राजा सलवान ते राणी लूणा बहुत हैरान हुंदे ने तां राजा सलवान दसदा है कि साडा एक पुत्र सी पर उसने अपनी मां दे नाल बदसलूकी कीती ते इस करके उसनू मैं मौत दी सज़ा सुना दित्ती। ए सुन के जोगी पूरन राणी लूणा नू कहिंदा है कि तुसी सचो सच दसो कि तुसी उस अपने पुत्र दे नाल की सलूक कीता सी। कहिंदे ने कि राणी लूणा पहलां तां टाल मटोल करदी है फिर जदों पूरन जोर दे के कहिंदा है कि मैं सच जाणदा हाँ ते अपने आप राणी लूणा अपने जुर्म दा इकबाल करदी है ते कहिंदी है कि मैं ही अपने उस मतरे पुत्र नू झूठी तोहमत ला के उस नू मरवाया सी। ते कोल खड़ा राजा सलवान गुस्से दे विच आ जांदा है तो मतरी मां लूणा दे मूहों एहो जी गल सुन के राणी इच्छरा बहुत हैरान हुंदी है ते राणी इच्छरा दे नैणा दे विचों हंजुआं दी धारा वगदी है।

102.7 FM रेनबो ते आनंद माण रहे हो पंजाब पंजाबी और पंजाबियत दी बातां पौंदा प्रोग्राम रंगला पंजाब। रंगले पंजाब दे खूबसूरत रंगां दी गल करदे आ हर मंगलवार ते अज असी गल कर रहे हां पूरन भगत दी लोक गाथा दे बारे, पूरन भगत दी उस लोक कहानी दे बारे जो लोक मना दे विच अज भी वसी हुई है। सो गीत तो पहला जिक्र कर रहे सी कि जदों राजे सलवान नूं पता लगता है कि उस दी मतरेई मां लूणा ने झूठी तोहमत ला के पूरन भगत नूं जड़ाया ओ मरवाउण दा हुक्म जड़ाया सुना दिता सी ते सुन के कहिंदे ने कि राजा सलवान गुस्से दे विच आके अपनी तलवार कढ लैंदा है पर पूरन राजे सलवान नूं अजिहा करन तों रोक दिंदा है अते कहिंदा है कि राणी लूणा नूं माफ़ कर दो, तुहाडा पुत्तर जिउंदा है और मैं ही तुहाडा

नमस्कार, एफएम रेनबो ते वेला हो गया न्यूज़ हेडलाइंस दा। भारत पछमी एशिया विच व्यापार वापर रही घटनावां ते नेड़े नज़र रख रहा है। विदेश मंत्रालय ने ईरानी दूतघर दे उप मिशन मुखी नूं अज तलब कीता है अते व्यापारक समुद्री जहाज़ां उपर हमलिया दे सख्त विरोध दर्ज करवाया है। आमदन कर विभाग ने वित्तीय साल 2026-27 विच हुण तक 7,73,000 करोड़ रुपए तो वध दा सीधा टैक्स एकत्र कीता है, जो पिछले साल दी इसे म्याद दे मुकाबले 16% तो वध है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे विच कई वड्डे सुधारां दा ऐलान कीता, कहा खादां दी ढोआ ढुआई हुण रवायती बंद माल गड्डियां दी बजाए विशेष तौर ते डिजाइन कीते कंटेनरां राहीं होवेगी। भारत अते बरतानिया दरमियान व्यापक आर्थिक अते व्यापारक समझौता कल तो लागू होवेगा। राष्ट्रीय महिला कमिशन दे चेयरपर्सन विजया रहाटकर कल मोगा अते 16 जुलाई नूं बठिंडा दा दौरा करनगे। महिलावां दी सुरक्षा अते विभागां दे आपसी तालमेल नाल संबंधित वख-वख प्रोग्रामां विच शामिल होणगे। पंजाब सरकार ने युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दौरान नशा तस्करां दी 847 करोड़ रुपए की जायदाद जब्त करके ढा दित्ती है अते सूबे विच 73,000 नशा तस्करां नूं गिरफ्तार कीता है। पंजाब पुलिस ने अमृतसर विच दो वख-वख मामलों च 5 तस्करां नूं एक AK-47 राइफल असले अते 30 किलोग्राम हैरोइन समेत गिरफ्तार कीता है। पंजाब सरकार ने श्री गुरु रविदास जी महाराज जी के 650वें प्रकाश पुरब लई 80 करोड़ रुपए राखवें रखे। सूबे भर में 650 गुरु रविदास जी बगीचियां स्थापित कीतियां जाणगियां अते 6.5 लाख बूटे लाए जाणगे। जल स्रोत मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने कहा कि सूबा सरकारी नहरी पानी नूं 100% टेलां तक पहुंचाउणा यकीनी बनाएगी। इंग्लैंड ने भारत खिलाफ 3 एक रोज़ा क्रिकेट मैचों की लड़ी के पहले मैच विच जित लई 259 दौड़ां दा टीचा रख्या है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सैमीफाइनल विच अज फ्रांस अते स्पेन आमो सामने होणगे। ये सन हुण तक दीआं एफएम न्यूज़ हेडलाइंस।

नमस्कार आदाब सत श्री अकाल FM बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ नाल दिना न्यूज़ ऑन AIR ऐप सुनन वाले सारे ही दोस्तों नू एक बार फिर तो प्यार भरी सत श्री अकाल। स्टूडियो कड़ी ते समा 9:04:25 हो रहे ने ते प्रोग्राम दिल चाहता है दा आगाज़ हो चुका है जनाब। प्रोग्राम दिल चाहता है दे विच असी गीत प्ले करदे आ जिन्हां गीतां दी फरमाइश तुसी साडे व्हाट्सएप नंबर 9855101027 ते करदे हो। सो हिंदी पंजाबी फिल्मी गीतां दी फरमाइश तुसी साडे व्हाट्सएप नंबर 9855101027 ते कर सकदे हो और जिवें ही तुहाडा मैसेज जिवें ही तुहाडे वल्लों भेजिया होया सुनेहा साडे तक पहुँचेगा उस वक्त तुहाडा नाम लैके तुहाडे पिंड दा नाम लैके तुहाडे तक तुहाडा गीत जरूर पहुँचाया जाएगा। सो जिनी देर तक साढ़े दोस्त सानूं मैसेज करते हैं उन्नी देर तक मुहम्मद रफ़ी की खूबसूरत आवाज़ दे विच एक गीत इंजॉय करते हैं। मुहम्मद रफ़ी का साथ निभाए सुमन कल्याणपुर जी ने। आओ सुनते हैं गीत और गीत तो बाद थोड़े प्यार भरे मैसेज प्रोग्राम में शामिल किए जाएंगे और थोड़े इन मैसेज के राही असी थोड़िया फरमाइशा पूरी करेंगे। आओ सुनते हैं खूबसूरत गीत प्रोग्राम दिल चाहता है का यह पहला ट्रैक। प्रोग्राम इंजॉय कर रहे अपने दोस्त ललित के नाल।

102.7 FM रेनबो ते प्रोग्राम दिल चाहता है दा आनंद माण रहे अपने दोस्त ललित दे नाल। प्रोग्राम दे विच तुसी भी जनाब शिरकत कर सकते हो। नंबर है 9855 10 10 27। सो इस नंबर ते तुसी सानू व्हाट्सएप मैसेज करना है, अपना नाम लिखना है, अपने शहर का नाम लिखना है, तो भेज देना है साढ़े इस व्हाट्सएप नंबर ते। ते जिवें ही थोड़ा मैसेज मेरे तक पहुँचेगा, बकायदा थोड़ा नाम लैके, थोड़े पिंड का नाम लैके, थोड़े तक थोड़ा गीत जरूर पहुँचाया जाएगा। तो आगाज़ करते हैं इस सिलसिले नू, शुरुआत करते हैं। बहुत सारे दोस्तों ने सानू मैसेज आने शुरू हो चुके हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा लिस्ट जिहड़ी आ बहुत लंबी हो चुकी है। सो साढ़े तक मैसेज कीता सीगा जी, फूल चिंचोली तालुका सोलापुर तो सानू मैसेज कर रहे सी जाकिर, सुमेया, सुबान, समीर, सलमा, मुमताज, दिलशाद, नासिर, बानू बी ते बादशाह मुलानी। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी, थोड़ा मैसेज प्रोग्राम दे विच पहुंच चुका है। और एक होर मैसेज स्वरण सिंह पिंड दोलेवाल दोलेवाला जिला मोगा तो सानू मैसेज कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जी। जनाब थोड़ा मैसेज भी साढ़े कोल पहुंच गया है।

राजे, कुमार संचित, कुमार प्रथमेश, कुमार कुमारी प्रणाली, कुमारी सरबत, कुमारी सानवी, कुमारी कल्पना, बहुत बहुत शुक्रिया जी थोड़ा। गाँव घमंडिया सूरतगढ़ तो जगदीश, प्रमिला, ज्योति, सरिता सानू मैसेज कर रहे हैं। इन्हों का मैसेज असी ऑलरेडी रीड कर चुके हुए हैं। और एक होर मैसेज, नमस्कार जी, वड़िंगखेड़ा पंजाब तो मिंटू, टॉमस, पिंकी, लवली ते आरती जी मैसेज कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जी। सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका गाव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा पाठक सानू मैसेज कर रहे हैं अनारकली बाजार जगराओं तो। तो दोस्तों ने मैसेज किया सी कि मूवी बेताब दे विचों लता मंगेशकर और शबीब कुमार दी आवाज़ों विच गाए ये गीत नूं जरूर सुनाया जाए। आओ सुनते हैं एक खूबसूरत गीत, और गीत तो बाद थोड़ियां प्यारी जी फरमाइशां असी प्रोग्राम दे विच शामिल करांगे और थोड़ियां फरमाइशां जरूर पूरियां करांगे।

102.7 FM रेनबो प्रोग्राम दिल चाहता है आनंद माण रहे हैं अपने दोस्त ललित दिनाल और बहुत सारे दोस्त सानू मैसेज कर रहे हैं और एक एक करके सारे ही दोस्तों के मैसेज असी प्रोग्राम दे विच शामिल कर रहे हैं और उन्हां दे गीत उन्हां तक पहुँचा रहे हैं। सो एक होर मैसेज बलविंदर सरा गुणतास रसनदीप मनिंदर पिंड मोरजंड सिखा हनुमानगढ़ तो सानू मैसेज कर रहे हैं और फिल्म बाजार का कहिंदे कोई गीत सानू सुना दिओ। सो एक होर मैसेज साढ़े तक पहुँचा है, लिखा है कि दिल चाहता है जी की हाल है पाजी जी थोड़ा हाल जी मैं बहुत वधिया जी। चक 14 PSB जिला श्री गंगानगर तो सानू मैसेज कर रहे हैं। कुलदीप सिंह राजविंदर कौर संदीप सिंह जसकरण सिंह हरदीप सिंह मनराज कह रहे हैं किसी भी गीत दे विच सानू शामिल किया जाए। नरवेल महाराष्ट्र तो सानू PS नहावकर और निर्मला नहावकर मैसेज कर रहे हैं और नाल इन्हां दे विशाल नारायण इंगले सोपान ताइड़े आशीष मोहकर मलकापुर महाराष्ट्र तो मैसेज कर रहे हैं। कनेरा महला पटियाला तो सानू मुकेश बत्ता नीलम बत्ता नितिन पलक करण गीतू निहारिका ते वंश बत्ता जी मैसेज कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जी थोड़ा। और एक होर मैसेज सानू पहुँचा है गाँव जाखेद राजस्थान तो शुभदयाल खटक विमला देवी अमरजीत सुंदर लाल योगेश दीपक कुमारी पूजा खटक। सो बहुत बहुत शुक्रिया जी मैसेज करने लिए थोड़ा। और इसी तरह ही एक होर मैसेज दिल चाहता है प्रोग्राम दे विच मैसेज कर रहे ने गांव फ्रांसी जिला हिसार तो राजकुमार डुड्डी प्रमोद कुमार पुष्पेंद्र कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया जी। और इसी तरह ही लिख रहे ने किसी भी गीत विच सानू शामिल किया जाए। आजाद नगर लक्सर तो आजाद नगर लक्सर हरिद्वार तो ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर राही महराज जहां। सो इसी तरह ही पिंड चंजोड़ी तहसील खरड़ जिला SAS नगर तो लियाकत अली निशा शाहीन यासमीन अरमान मलिक वालों कह रहे हैं कि सारे आकाशवाणी परिवार को प्यार भरी सत श्रीकाल जी, सानू तुसी कोई भी गीत सुना दे, बहुत बहुत शुक्रिया जी। सो बाजार मूवी दे विचों लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी दी खूबसूरत आवाज़ों में गाया ये मैं गीत थोड़े तक पहुँचा रहा हूँ।

प्रोग्राम दे विच हुण समा 9:57 और 9:08 हो रहे हैं और जाते जाते दोस्तों के नाम जरूर प्रोग्राम च शामिल करांगे और मैसेज साढ़े तक पहुँचा सी गांधी चौंक बाड़मेर राजस्थान तो बबलेश पवार डैनी मनीष जी का मैसेज आया सी और दिनेश चौहान भी सानू मैसेज कर रहे सी नाल दी नाल एक होर कृष्णा पार्क तो सानू मैसेज सुखविंदर सिंह जोड़ा ने किया सी दिल्ली तो और कार्यक्रम प्रसारक महोदय जी आपको नमस्कार जी थानू भी प्यार भरी सत श्री अकाल नमस्कार सिद्धार्थ गोडाने अर्चना प्रणय और हीरामन शेंडे का मैसेज सानू पहुँचा सी और एक होर मैसेज साढ़े तक पहुँचा सी राम सिंहपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान तो अशोक बबर पवन राजेश अजय राहुल ते मनु और एक होर मैसेज रविंदर मोहनदास आशा देवी राघव कुमार भानुप्रिया वर्षा सुमन किशनगंज बिहार तो सानू मैसेज कर रहे सीगे और होर साढ़े तक मैसेज जी हाँ तकरीबन सारे ही दोस्तों के असी मैसेज प्रोग्राम दे विच शामिल कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं भी सारे दोस्तों के प्रोग्राम दे विच असी नाम जरूर ले लिया होएगा और प्रोग्राम दिल चाहता हूँ है वाइंड अप करन दा समा आ गया है तुसीं कितें नहीं जाना ठीक 10 प्रोग्राम शामे गज़ल दे विच तुहानू गज़लां दी रंगीन खूबसूरत महफिल दे विच लै चलांगे और जांदे जांदे तुहाडे लई मुकेश कुमार दी खूबसूरत आवाज़ दे विच एक गीत मैं प्ले करन जा रहा उम्मीद है गीत तुहानू पसंद आएगा।

चलो आज कोई निशान ढूंढते हैं, चलो आज कोई निशान ढूंढते हैं, दिल का बहता हुआ कारवां ढूंढते हैं। मुद्दत हो गई मुस्कुराए हुए, चलो आज खुशियों का नया जहां ढूंढते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्टूडियो कटते समा 10:02 और वेला हो गया ये प्रोग्राम शामे गजल दा। गजलां दी बेहतरीन रंगीन दुनिया दे विच थोड़ा बहुत बहुत स्वागत। जिंदगी कहंदे ने कि बहुत सारा इम्तिहान लैंदी है, जिंदगी दे विच बहुत सारे उतार चढ़ाव आउंदे ने, कई बार किसी नाल गिले शिकवे भी हो जाते ने, ते जिहदे नाल तकरार ज़्यादा हो जाता है और कितने ना कितने गलत फहमियां साढ़े रिश्तों दूर कर देंदिया ने, ते असी उस इंसान तो दूर हो जाने हैं। या फिर कह लो कि जिंदगी दे विच कुछ उतार चढ़ाव अजिहे आ जाते हैं कि मन उदास हो जाता है, कि दिल करता नहीं कि दोबारा तो फिर तो कोशिश करिए। उदासी का आलम इस तरह छा जाता है कि दिल कितने भी लगता नहीं, पर यह वो समा होता है जो अपने आप को संभालना चाहिए, अपने आप को तराशना चाहिए, तो फिर तो दोबारा कोशिश करके जिंदगी एक बार फिर तो दुगनी रफ्तार दे नाल, मेहनत दे नाल, शिद्दत दे नाल पूरी करन दे लई, जिंदगी का आनंद माणन दे लई फिर तो खड़ा होने की कोशिश करनी चाहिए है। तो दोबारा फिर तो कोशिश करन दे नाल जिंदगी दे विच तुसी ओ मुकाम हासिल करोगे जिथे तुसी जाना चाहते हो।

इस दिल के मारों का यही इम्तिहान लेती है, जब छनकती है तेरी पायल तो जान लेती है। जिस दिन से जालिम ने छनकना सीखा है, जिस दिन से जालिम ने छनकना सीखा है, मेरे दिल ने मेरे सीने में धड़कना सीखा है। जान तो चीज क्या है, ये ईमान लेती है, जब छनकती है तेरी पायल तो जान लेती है। जी हाँ दोस्तों, जिस इंसान ना, जिस शख्स ना थानू मुहब्बत हो जाती है, जड़ा इंसान थोड़ी दिल दी धड़कन बन जाता है, उदा बोलना, उदा हर एक अदा, उदियां गल्लां बातां थानू चंगियां लगदियां ने, उदा साथ थानू चंगा लगता है। तो दिल करता है कि उस इंसान नू इस तरह ही सुनते जाइए, तो उस इंसान दियां गल्लां इस कदर चंगियां लगदियां ने कि जिवें उन्हां गल्लां नू सुनते जाइए और जिंदगी दी रफ्तार समय का ये पहिया इत ही रुक जाए। कोई झोंका जो गुजरे आंगन से, कोई झोंका जो गुजरे आंगन से, चाल तेरी दिखाई देती है, सीढ़ियों से उतरती शाम को तेरी पायल सुनाई देती है, तेरी पायल सुनाई देती है।

रात खामोश सी चुपचाप है, रात खामोश सी चुपचाप है, शोर तेरी यादों का बेहिसाब है। 102.7 FM रेनबो ते प्रोग्राम शामी गजल दा आनंद माण रहे हो अपने दोस्त ललित दे नाल। वैसे इस खामोश रात दे विच बहुत कुछ राज छुपे हुए ने, जिन्हां दे नैणां नूं नींदर नहीं पैंदी, ओह दस सकदे ने कि इह रात उहनां दे लई किन्नी लंबी है, किसे दा इंतजार इहनां अखां नूं रहिंदा है, किसे नूं मिलन दी तड़प इहनां अखां नूं रहिंदी है। ते हुण अखां नूं नींद किद्दां पै सकदी है, जिन्हां अखां ने कुछ सुपने देखे होण तो उन्हां दे लई इह रात बड़ा कुछ लैके आउंदी है, बहुत सारे नवीं जिंदगी नूं जीउण दीआं कहानियां, और किसी नूं मिलके जिहड़ा सुकून हासिल हुंदा है वह इस रात दी बुक्कल दे विच छुपिया हुंदा है। ते जदों इह रात बीतदी है ते उस वक्त उन्हां दा उह सुपना पूरा हुंदा है। सो ये चुप चाप जिहड़ी रात है, एक खामोश रात है, बहुत कुछ अपने अंदर तूफान समेट के बैठी हुई है।

नींद कहाँ जब याद तुम्हारी आई, कुछ लम्हे ख्वाबों में आके पूरी रात बस तन्हाई। 102.7 FM रेनबो ते प्रोग्राम शामे गजल एंजॉय कर रहे अपने दोस्त ललित के नाल। बाकी जदों फिर किसी की याद आती है तो उस वक्त फिर नैणा नूं नींदर नहीं पैंदी। और ये यादा का काफिला इन्ना लंबा होता है कि एक करके उस इंसान दियाँ यादा थोड़े तक पहुँच दिया ने। उदे नाल बिताए हुए खूबसूरत पल, उदे नाल बिताए हुए खूबसूरत लम्हे, उदे नाल जुड़िया हुई एक एक यादा, एक एक चीज़ा थोड़े जहन दे विच फिर तो तरोताज़ा हो जांदियां ने। बाकी यादा भी बहुत अजीब होंदिया ने कि कोहां दूर बैठा होया कोई इंसान किवें थोड़े दिलो दिमाग तक पहुंच जाता है। यही हर रात की अब है कहानी, यही हर रात की अब है कहानी, करी है नींद ने फिर आना कहानी, बदलते हम रहे करवट पे करवट, बदलते हम रहे करवट पे करवट, हुई कुछ देर फिर से मेहरबानी, यही हर रात की अब है कहानी, यही हर रात की अब है कहानी।

सितारों भरी ये चांदनी रात आई है, तेरी यादों के खत मेरे नाम लाई है। 102.7 FM रेनबो ते वेला हो गया ये प्रोग्राम एक प्यार का नगमा है दा। मिठे मिठे गीत थोड़े तक पहुंचाए जाएंगे ठीक 11 बजे तक। पूछो मेरे दिल से तुम्हें पैगाम लिखता हूँ, पूछो मेरे दिल से तुम्हें पैगाम लिखता हूँ, साथ गुजारी बातें तमाम लिखता हूँ। दीवानी हो जाती है वो कलम भी, दीवानी हो जाती है वो कलम भी, जिस कलम से तुम्हारा नाम लिखता हूँ, जिस कलम से तुम्हारा नाम लिखता हूँ।

मुझे तो बस प्यारा है मेरे यार का चेहरा, मुझे तो बस प्यारा है मेरे यार का चेहरा, बंद करूं आंखें तो नजर आए मेरे यार का चेहरा। हंसी और भी होंगे इस दुनिया में बहुत, हंसी और भी होंगे इस दुनिया में बहुत, पर मुझको तो भाई मेरे यार का चेहरा, मुझे तो बस प्यारा है मेरे यार का चेहरा।

मेरी धड़कन मेरी जान हो तुम, मेरी धड़कन मेरी जान हो तुम, निगाहों का देखा हर ख्वाब हो तुम। तारीफ क्या करूं तुम्हारी, हर अदा से लाजवाब हो तुम, हर अदा से लाजवाब हो तुम।

सपनों की इस दुनिया में हम खोते चले गए, सपनों की इस दुनिया में हम खोते चले गए, होश में थे फिर भी मदहोश होते चले गए। जाने क्या जादू था उस अजनबी चेहरे में, जाने क्या जादू था उस अजनबी चेहरे में, खुद को बहुत रोका फिर भी उसके होते चले गए, खुद को बहुत रोका फिर भी उसके होते चले गए।

से पहली मुलाकात, तेरी मुझसे पहली मुलाकात, वो प्यार की पहली बरसात मुझे आज भी याद है। वो खामोश तारों भरी चांदनी रात, वो प्यार की मीठी मीठी बात मुझे आज भी याद है। वो तेरे खतों का इंतजार करना, वो तेरी याद में पल पल मरना मुझे आज भी याद है। वो तेरा पल के झुका के शर्माना, फिर धीरे धीरे मुस्कुराना मुझे आज भी याद है।

एक अजनबी से मुझे इतना प्यार क्यों है, एक अजनबी से मुझे इतना प्यार क्यों है, इनकार करने पर चाहत का इकरार क्यों है, उसे पाना शायद तकदीर में नहीं, उसे पाना शायद तकदीर में नहीं, फिर उसी मोड़ पर उसका इंतज़ार क्यों है, एक अजनबी से मुझे इतना प्यार क्यों है।

102.7 FM रेनबो ते प्रोग्राम एक प्यार का नगमा है। इंजॉय कर रहे सी अपने दोस्त ललित दे नाल ते प्रोग्राम नू इत्थे ही वाइंड अप करन दा समा आ गया है। पर जांदे जांदे सिर्फ ते सिर्फ यही कह के जावांगा कि जिंदगी दे विच कोई थानू चाहण वाला कोई खास इंसान है तो उस इंसान की कदर करनी चाहिए है ते उस इंसान नू अपने तो कदे भी दूर नहीं जान देना चाहिए। अगर जेकर कोई गलत फहमियाँ थोड़े दरम्यान आ गई ने उन्होंने गलत फहमियों जल्द तो जल्द दूर कर लेना चाहिए। कहते कि गलत फहमियाँ बहुत व्डे तो व्डा रिश्ता तोड़ दिंदियां ने। सो इन छोटिया तो छोटिया गलत फहमियों जोड़ा जल्द तो जल्द दूर कर लेना चाहिए। तेरी यादों के सिवा कोई लम्हा गुजारा नहीं, तेरी यादों के सिवा कोई लम्हा गुजारा नहीं, एक पल नहीं जब तुम्हें मेरे दिल ने पुकारा नहीं। तेरे बिन यूं कट रही है दरियाए जिंदगी, तेरे बिन यूं कट रही है दरियाए जिंदगी, कश्ती भी है माझी भी है पर किनारा नहीं। तेरी यादों के सिवा कोई लम्हा गुजारा नहीं, तेरी यादों के सिवा कोई लम्हा गुजारा नहीं।